0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक आयोजन श्री रामचरित मानस गान। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों और भाइयों, राम राम। भाइयो, आज कृषि की बातों में चर्चा करेंगे। मुर्गी घरों की देखभाल के बारे में कुछ बातचीत है। भाइयो देखो, इसमें जब हम मुर्गी घरों की बात करें तो जो हमारे मुर्गी पालक भाई हैं वो जरूर अपना थोड़ा हा इस चीज़ का प्रबंध करें हैं। और गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में जो सबसे ज़रूरी चीज़ वो है मुर्गियों को गर्मी से बचाने के लिए, और विशेषकर जो लू जिसमें चलें, क्योंकि देखो अब तो फिर भी थोड़ा हा मौसम ठीक है, बाकी आगे आने वाले समय में लू भी चलेंगी, जो तापमान है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसमें हमने उनका मुर्गी घरों का लू से बचाव करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें जो मुर्गी घर हैं उसका जो तापमान की हम बात करें 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर जो मुर्गी हैं उनको दिक्कत होनी शुरू हो जाए है। और इसमें जहाँ तक हम प्रबंधन की बात करें, उसमें वेंटिलेशन का यानी कि जो हवा का संचार है उसका होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब शेड में हवा में का आवागमन रहेगा तो वहाँ पर व्यवस्था अच्छी रहेगी। इसमें खिड़कियों का और थोड़ा बहुत हवा का, कूलर का, ये भी हमें प्रबंध करना पड़ेगा। भाई जो खास बात करें बेछाया की व्यवस्था है, कुछ हमारे जो मुर्गी पालक भाई हैं वो शेड के ऊपर सीधी धूप से बचाव कर रहे हैं। और उसमें ज़रूरी है कि जैसे हम पेड़ की बात करें या तो पेड़ पौधे हों, उससे भी जो हवा आवेगी वो थोड़ी ही ठंडी आवेगी, या फिर जो जूट की बोरी हैं या कुछ घास फूस है वो ऊपर की छत के ऊपर रख दें, और उसमें जो पानी का छिड़काव है वो ज़रूर उसमें कर दें ताकि जो तापमान है वो कम हो जाए। और जहाँ तक बात करें बिछावन की, तो बिछावन हमेशा इनका सूखा रहना चाहिए, कम से कम 2-3 इंच की जो परत है वो होनी चाहिए। और इसमें क्या है कि जो गर्मी है, गर्मी के मौसम में ज़्यादा हम इसलिए नहीं करें क्योंकि ज़्यादा होने के बाद फिर उसमें उमस बढ़ने की बड़ी दिक्कत रहे है। और ख़ास ध्यान ये रखना है कि भाई इसमें अमोनिया गैस से वो ना बन पावे। पंखे और कूलर की भी हमने व्यवस्था इसके अंदर करनी पड़े है। जहाँ तक हम बात करें बे इसमें जो पानी की या जो पोषण तत्व हमने देने हैं, पोषक जो देने हैं उनके बारे में, ठंडा पानी हमने मुर्गियों को ज़रूर देना है। इसमें जो मौसम के हिसाब से मौसम के अनुकूल जो पानी है वो हमने देना है, और बिल्कुल 24 घंटे मुर्गियों के आगे जो पानी है वो रखना ज़रूरी है। और कुछ समय के बाद जैसे ही पानी थोड़ा बहुत गर्म बन जाए तो उसको बदलते रहना है, इस बात का ध्यान रखना है। और जहाँ तक बात करें दाना देने की, तो जो दोपहर का समय है उसमें गर्मी ज़्यादा हो है उस समय पर हमने मुर्गियों को दाना है वो नहीं देना है। इसमें ध्यान रखना है कि जो हम मुर्गियों को दाना दें उनको तो वो फिर सुबह या शाम को दें, क्योंकि दिन में देने से जो वातावरण है वो गर्म हो गया है और फिर मुर्गियों का जो खुद का तापमान है वो भी ज़्यादा हो गया है, इसलिए हमने दोपहर को नहीं देना। इसमें सुबह और शाम को जो खाना है वो मुर्गियों को देना है। जहाँ तक हम बात करें भाई पौष्टिक आहार की, तो पौष्टिक आहार में उन्होंने हमने जो मुर्गियों को देना है वो फाइबर से युक्त जो भोजन है वो देना है। और गर्मी से बचाव के लिए एक तो हम सब

0: पहली बात तो ये है कि भाई जिस हिसाब से हमारा जो मुर्गी घर बनाया है हमने, उसमें सिर्फ उतने ही अनुपात में मुर्गी रखें, क्योंकि कई बार हम मुर्गियों की संख्या ज़्यादा करें हैं तो उसमें फिर जो मुर्गी हैं वो उनका उनकी घुटन है वो होना शुरू हो जाए। तो इसलिए हमने जो भीड़ है वो बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं करनी है, और जो मुर्गियों को घूमने फिरने की जो पर्याप्त जगह है वो उनको देना बहुत ज़रूरी है। यदि हम वो नहीं देंगे तो फिर वो उसके अंदर जो घुटन है वो महसूस करेंगी। और ख़ास बात इसमें भी ये है कि देखो जो निगरानी है वो रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें समय समय पर ये देखता रहना। कई बार मान लो किसी कोने में जाकर मुर्गियाँ हैं वो हाँफना शुरू कर दें हैं, पंख फैलाना शुरू कर दें हैं, या सुस्त पड़नी शुरू हो जाए हैं, उस समय जो मुर्गी घर है उसमें हमने अपनी मुर्गियों के ऊपर ध्यान रखना है कि भाई इसमें जो गर्मी के लक्षण हैं वो हमने दिखाई देने शुरू हो गए, और ख़ासकर जो दोपहर का समय है उसमें मुर्गियों को बिल्कुल भी बाहर हमने नहीं छोड़ना है। और जितना भी हो उसके जैसे पंखा लगाने की या कूलर लगाने की हम बात करें वो भी हम लगा सकते हैं, बाकी इसके अंदर हम जो बिछावन है वो साफ़ सुथरा रखें, उसके अंदर किसी भी प्रकार की जो दुर्गंध है वो नहीं होनी चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि की बातें, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही क्षणों के बाद आप सुनेंगे समाचार। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आर्थिकविषयिकया मन्त्रिपरिषदसमित्या अस्मै विपणनसत्राय 14 ग्रैष्मिकसस्यानां MSP न्यूनतमसमर्थनमूल्यानि वर्धयितुम् अनुमोदितम्। नवदेहल्यां केन्द्रीयमन्त्रिसभासभायाः अनन्तरं प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् सूचनाप्रसारणमन्त्री अश्विनीवैष्णवः अवदत् यत् अनेन निर्णयेन उत्पादकेभ्यः तेषाम् उत्पादानां कृते लाभप्रदम मूल्यम सुनिश्चितम भविष्यतीति।
3: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से, और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
2: अस्य सत्रस्य विपणनकालाय ग्रैष्मिकसस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यानां वृद्धिं स्वीकृत्य नवदेहल्यां केन्द्रीयमन्त्रिसभायाः निर्णयः देशे कोटिशः खाद्यप्रदायकेभ्यः स्वोत्पादानां उचितं लाभप्रदं च मूल्यं प्राप्नुयात् इति सुनिश्चितं करिष्यतीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वस्तनादारभ्य अस्य मासस्य 20 दिनांकपर्यन्तं UAE नेदरलैंड स्वीडन नॉर्वे इटली इत्येतेषां देशानां यात्रायां भविष्यति। विदेश मंत्रालयस्य सचिवः CB जॉर्जः सूचितवान् यत् पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य प्रथमपादे श्रीमोदी UAE अध्यक्षं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मिलिष्यति। सः अवदत् यत् उभावपि नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकारे परस्परहितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रीय विषयेषु च विचार विनिमयं करिष्यतः। अद्य नवदेहल्यां ब्रिक्स विदेश मन्त्रिमण्डलस्य द्विवार्षिकं सम्मेलनम् आरभ्यते। सम्मेलनस्य अध्यक्षः विदेशमन्त्री एस जयशंकरः भविष्यति। ब्रिक्स देशानां विदेशमन्त्रिणः सदस्यराष्ट्राणां प्रतिनिधिदलप्रमुखाश्च अस्यां सभायां भागं ग्रहीष्यन्ति। केन्द्रीय अन्वेषण विभागः NEET UG 2026 इति परीक्षायाः विषये अभिकथित अनियमिततायाः प्रश्नपत्रस्य अनियमिततया प्रकाशनेति विषये च 5 अभियुक्तान् गृहीतवान्। प्रकरणस्य 5 अभियुक्ताः जयपुरतः 3, एकैकौ गुरुग्रामनाशिकतः, अन्ये अनेके च शङ्किताः सम्प्रति परीक्षमाणाः सन्ति। असम सर्वकारः अस्य मासस्य षड्विंशे दिनाङ्के राज्य विधानसभायां यूनिफॉर्म सिविल कोड यूजीसीसी इति समान नागरिक संहिता विधेयकं प्रवर्तयिष्यति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स A20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. A two-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Narendra Modi will visit Abu Dhabi tomorrow as the first stop of a five-nation tour that will take him through the UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy between Friday and 20th of this month. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, informed that on the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will meet UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. He said the two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest.
5: Prime Minister will begin his visit from the UAE on 15 May, where he will meet the President of the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and exchange views on bilateral relations, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. During the visit, both the leaders will discuss avenues to further deepen our bilateral ties in areas including trade, investment, energy, technology, culture, and people-to-people connect.
4: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC Bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said, a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to the 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. With this move, Assam is set to become the third state after Uttarakhand and Gujarat to table a Uniform Civil Code Bill. The West Bengal government has lifted all restrictions on the interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, oil seeds, food grains and other essential products. The restrictions had been imposed by the erstwhile TMC government. On the other hand, in a significant development, the government of West Bengal decided to hand over the cases related to teachers' recruitment, municipal recruitment and cooperative services recruitment scams to the CBI. The West Bengal government has also terminated the services of all persons who were re-employed by the TMC government after their superannuation. In Uttar Pradesh, rain along with dust storm and lightning have claimed 43 lives in the past 24 hours. Chief Minister Yogi Adityanath has taken cognizance of the incidents and asked the officials to provide every possible help to the affected people. Maximum deaths have been reported from Bhadohi district, where 15 people lost their lives. More than one dozen people are injured and admitted to different hospitals.

रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम कंट्री वाइड और रात्रि 9:45 पर इनसाइट्स, ये दोनों कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

विविधा कार्यक्रम में प्रातः 7:15 पर सुनिएगा वार्ता। विषय रहेगा ज्येष्ठ माह का महत्व। वार्ताकार श्री संदीप पाठक। प्रातः 7:25 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे।

कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर डॉक्टर अशोक कुमार के साथ बातचीत का विषय होगा, कृषि जल की बचत कैसे करें। दिन में 2:30 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में अरहर की काश्त विषय पर चर्चा की जाएगी।

शाम 7 बजे ग्रामीण संसार कार्यक्रम में श्री बच्चन राम अरोड़ा के साथ बातचीत का विषय रहेगा वर्तमान समय में परिवारों की स्थिति। दिन में 12:30 पर श्रोता सुनेंगे NCERT द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम।

रात्रि 8:25 पर सुनिएगा सुगम संगीत, प्रातः 9 बजे फोन इन कार्यक्रम हेलो रोहतक प्रसारित किया जाएगा। दिन में 1:10 पर सुनिएगा चित्रपट संगीत। फिल्म संगीत का प्रसारण समय रहेगा 7:30 और 9:15 पर होगा कार्यक्रम एक फिल्म से। रात्रि 10 बजे फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मन चाहे गीत प्रसारित किया जाएगा।

0: प्रातः 8:30 पर लोक संगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे दीपचंद। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। विविध कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं वार्ता। विषय है ज्येष्ठ माँ का महत्व। वार्ताकार श्री संदीप पाठक।
1: नमस्कार, आज मैं पंडित संदीप पाठक के यहाँ ऋतुओं के संबंध में और ज्येष्ठ मास में क्या क्या इसका महत्व है और क्या हम सब लोगों के ऊपर प्राकृतिक के ऊपर इसका प्रभाव रहता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष के अंदर 6 ऋतुएं रहती हैं, जिसमें ज्येष्ठ मास और आषाढ़ मास जो है वो ग्रीष्म ऋतु है। इस मास के अंदर विशेष गर्मी रहती है और इस गर्मी का जो प्रकोप है वो सभी जीव जंतुओं के ऊपर, प्राकृति के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर और सर्व जन साधारण के ऊपर रहता है। इसीलिए ज्येष्ठ मास और आषाढ़ मास में हमारे पुराणों के अंदर, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा परोपकार करना बताया गया, जिससे प्रकृति का संतुलन भी बना रहे और जो जीव हैं उन सब जीवों के ऊपर उपकार भी हो पाए, ताकि उनको जल प्राप्त हो पाए। इसीलिए इस मास के अंदर विशेष रूप से जल दान का विशेष महत्व है, क्योंकि आप देखें कहीं पर भी आप जाते हैं तो प्यास, भूख और प्यास, चाहे कोई कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, अगर आप किसी तीर्थ यात्रा में हैं या अपने शहर में भी अगर आप हैं और पैदल यात्रा आपको थोड़ी करनी भी पड़ गई तो आपको कुछ क्षण के बाद प्यास लग जाती है, और उस समय में कोई आपको शीतल जल पिला दे तो आपके मन से एक दुआ निकलती है और आप उनको हृदय से धन्यवाद कहते हैं। तो इसलिए ज्येष्ठ मास में विशेष रूप से आप पहले देखते थे कि जगह जगह पर छबील लगी होती थी, मटके रखे होते थे कोई जल पिलाने वाला हुआ, लेकिन समय बदला, उसके बाद कहीं वाटर कूलर लगने लगे। तो किसी भी प्रकार से इस ज्येष्ठ मास में और आषाढ़ मास में हम सबका धर्म बनता है कि हम अपनी ओर से परोपकार करें। देखो, एक जल का दान एक ऐसा दान है कि जो व्यक्ति को आत्मिक शांति देता है। जल की कीमत उस समय व्यक्ति को पता लगती है कि जिस समय उसे प्यास लगी हो और आसपास कोई जल ना हो, उस समय जल की कीमत का भी हमें पता लगता है। तो इस ज्येष्ठ मास के अंदर इसीलिए पुराणों में, शास्त्रों में व्याख्या की गई, गंगा दशहरा भी इसी महीने आया, निर्जला एकादशी का जो महत्व है वो भी इसी ज्येष्ठ मास में ही आया। तो ज्येष्ठ मास, जिसे ज्येष्ठ शब्द कहते हैं, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, तो अधिक गर्मी इस महीने के अंदर पड़ती है। तो केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि जहाँ गऊ माता हैं, गली के कुत्ते हैं, उनको भी प्यास लगती है। आप अपनी ओर से उन सब के लिए भी कुछ ना कुछ जल की व्यवस्था अवश्य करें। इसमें परोपकार तो है, लेकिन आपकी आत्मिक शांति भी आपको प्राप्त होगी, और जिस कार्य में आत्मिक शांति हो वही पुण्य है, और जिस कार्य में हम किसी का दिल दुखाते हैं वही पाप है। क्योंकि पुराणों में भी कहा गया, व्यास जी ने 18 पुराणों को लिखा और लिखने के बाद विचार करने लगे कि कब इंसान मेरे इन पुराणों को पढ़ेगा, समझेगा, अमल करेगा। तो उन्होंने बड़ा विचार करके एक श्लोक लिखा जिसमें पुण्य और पाप का उन्होंने पूरा सार समझाया। वो सार ये था कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् कि परोपकाराय पुण्याय और पापाय परपीडनम्। कि परोपकाराय पुण्याय, परोपकार से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं और किसी के दिल को दुखाने से बड़ा कोई पाप नहीं। तो मैं आज आपको केवल यही संदेश देने के लिए आया हूँ कि इस ज्येष्ठ मास और आषाढ़ मास में कोशिश करिए, अगर आप बड़ा वाटर कूलर नहीं लगा सकते तो 2 मटके ही अगर आप अपने गली के बाहर, अपने चौराहे पर आप रख सकते हैं और सुबह शाम उसमें जल भर सकते हैं। राहगीर अगर उसमें आकर के जल का पान करता है तो आपको बहुत दुआएं लगेंगी। और केवल मनुष्यों के लिए नहीं, जो बेजुबान प्राणी हैं इस संसार में, पक्षियों के लिए, पक्षियों के लिए मिट्टी के कसोरे भर करके आप रखें, और श्वान कुत्तों के लिए रखें, गौ माता के लिए रखें। ये एक ऐसा कार्य है जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। देखो, बाकी जीवन में हम कुछ ना कुछ पुण्य करते हैं तो उसमें हम अपना स्वार्थ ढूंढते हैं, लेकिन बेजुबानों को जो आप खिलाएंगे तो उनको आप अपना क्या नाम बताएंगे कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए तेरे लिए कर रहा हूँ? नहीं ना, तो आपको अच्छा लगेगा। तो आज ये जो संदेश ज्येष्ठ मास का है उसके लिए आपको ये करना बड़ा जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि वृक्ष लगाइए। वो वृक्ष जो आपके द्वारा लगाए जा रहे हैं वो ज्येष्ठ आषाढ़ मास में किसी को छाया देंगे। कोई राहगीर आएगा और राहगीर आकर के उसके नीचे बैठेगा। तभी तो कहते थे कि दादा ने लगाया लेकिन पोते ने फल खाया। आज आप लगाएंगे तो ना जाने हम लोग चले जाएंगे संसार से, लेकिन वो वृक्ष रहेंगे, वो प्राकृतिक बनी रहेगी, और उस प्रकृति के साथ हम मिल करके अपना इस संसार का धर्म, यही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप बाकी धर्मों की ओर भागते रहें, अगर इंसानियत ही नहीं सीखी, तो फिर इधर उधर से आपको मंत्र पढ़ने में, यज्ञ करने में कोई इतना लाभ नहीं होगा जितना लाभ आपको किसी बेजुबान का या किसी राहगीर को जल पिलाने से होगा। कहते हैं कि केवल एक जल के दान से, एक लोटे जल के दान से कितने हजारों प्याऊ लगाने का पुण्य मिलता है। और अगर ये काम आप खुद करो, आप देखो अब निर्जला एकादशी आएगी तो जगह जगह पर छबीले लगी होंगी, मीठी लस्सी बांटी जाएगी, लोग कर रहे हैं। और देखो, वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से वो करते आ रहे हैं, वो मूर्ख थोड़ी ना है, उनको पता है। वो अपना कीमती समय भी निकालते हैं, अपना धन भी लगाते हैं, और अपने मन से, तन मन धन से बच्चों तक को लेकर के राह पे खड़े होकर के गाड़ियां रुकवा रुकवा करके सबको जल पिलाते हैं। कुछ तो बात होगी, कुछ तो आत्मिक शांति होगी इसमें। तो ज्येष्ठ मास ये विशेष मास है आपका पुण्य कमाने।

0: के लिए और इस पुण्य को आप भी अर्जित करें। और आज हो सकता है मेरा संदेश जब तक आप तक पहुंचे उससे पहले आपके मन के अंदर कुछ इस प्रकार का भाव जग जाए कि मुझे भी ये करना है, तो हमारा भी ये दिया गया संदेश सफल होगा और आपके उस पुण्य में थोड़े से भागीदार हम भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रेरणा देता है उसे भी अंश मात्र फल मिला है। और अगर आप भी दूसरों को प्रेरणा देंगे तो आपको भी अधिक पुण्य प्राप्त होगा। और इसी के साथ ज्येष्ठ मास में हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू समाज में वृक्षों को देवतुल्य माना जाता है, क्योंकि प्राण वायु देते हैं, छाया देते हैं, वर्षा में सहायक हैं और अनेक जीवों का पालन करते हैं। इसलिए इस मास में वृक्षारोपण भी आपको बहुत जरूरी है, गौ सेवा बड़ी जरूरी है और सूर्य देवता की उपासना बड़ी जरूरी है और गंगा दशहरा का पवित्र स्नान, जो कि हमारे संस्कृति के अनुसार गंगा मैया में जाकर के हम स्नान करते हैं इस मास के अंदर, उसका बड़ा ही पुण्य है, बड़ा ही महत्व है। गंगा मैया जिनको माँ का दर्जा दिया है, अब देखो गऊ को भी माँ का दर्जा दिया है, तो ये सब माँ कल्याण के लिए, माँ किस लिए है? माँ कल्याण के लिए, पूत कपूत हो लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती। तो गंगा दशहरा पर हरिद्वार जाना या किसी भी स्थान पर जहाँ गंगा जी का प्रवाह हो रहा है वहाँ जाकर के आप स्नान करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या है, तन भी पवित्र है और मन भी पवित्र है। तो ज्येष्ठ मास में तपती धूप में पहले जैसे मैंने आपसे बताया कि किसी प्यासे को पानी पिलाना, और इन छह ऋतुओं के अंदर अलग अलग पुण्य बताए जो हम समय समय पर आपको संदेश देते रहेंगे, लेकिन इस बार हम केवल ग्रीष्म ऋतु के ऊपर विचार कर रहे हैं कि जिसमें ज्येष्ठ मास है और उसके साथ ही आषाढ़ मास है। तो इन दोनों मासों को ग्रीष्म ऋतु का विशेष समय बताया जाता है जहाँ गर्मी रहती है। देखो महत्व इसके साथ ही हमारे पारंपरिक कुछ नियम हैं वो उसका भी चलता है, लेकिन ये चीज़ें, अब देखो मटके जो बनाता है वह कुम्हार है। मैं आपको एक छोटा सा भाव इसके लिए बताता हूँ कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन का सार भी, उनसे हमें कुछ प्रेरणा भी लेनी चाहिए। एक बार एक कुम्हार क्या हुआ, मिट्टी के बर्तन बना रहा था, तो पीछे से उसकी पत्नी ने पूछा, अभी वो मिट्टी तैयार ही कर रहा था बर्तन बनाने के लिए, तो पत्नी ने आवाज़ लगा कर के पूछा कि स्वामी क्या बना रहे हो आप, तो उसने कहा कि मैं चिलम बना रहा हूँ, हुक्कों पर चिलम लगती है ना, तो मैं चिलम बना रहा हूँ, आजकल लोग बड़ा नशा करते हैं, चिलम मेरी खूब बिकेगी, अच्छा पैसा आएगा। उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी एक बात कहूँ आपसे, उन्होंने कहा कि जी, का मैं तो कहती हूँ कि ज्येष्ठ आषाढ़ का महीना आने वाला है, आप सुराही बनाएं, आप मटका बनाएं और लोग मटका और सुराही अधिक खरीदेंगे और उसमें हमें अधिक कमाई होगी। तो उसी समय कुमार ने दो मिनट विचार किया और फिर मिट्टी को तैयार करने लगा। अब मिट्टी ने पूछा कुमार से कि अब मेरे रूपदाता तो मुझे क्या बना रहा है, मुझे भी तो पता हो। कुम्हार ने कहा कि ए माटी, मैं तुझे अब सुराही बनाऊंगा। उन्होंने कहा अच्छा। मिट्टी ने कहा वाह। कुमार ने कहा कि मेरा विचार बदल गया, मैं पहले तुझे चिलम बना रहा था लेकिन अब मैं तुझे सुराही बनाऊंगा। माटी ने कहा कि अरे कुमार, तेरा तो केवल विचार ही बदला, मेरा तो पूरा जीवन बदल गया। अगर तू मुझे बना देता चिलम तो लोग मुझे ले जाते और मेरे ऊपर जलता हुआ अंगारा रख, मैं खुद भी जलती, जो मुझे पीता उसे भी मैं जलाती, लेकिन अब तू मुझे सुराही बना रहा है तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और जो मेरे पास आएगा उसे भी मैं शीतलता प्रदान करूंगी, इसे भी मैं आत्मिक शांति भी प्रदान करूंगी। तो ऐसा ही हमारा जीवन है कि हमने अपने जीवन को चिलम की तरह रखना है, खुद भी जलते रहना है, दूसरों को जलाते रहना है, या सुराही की तरह कि खुद भी हम आत्म ज्ञान परोपकार के द्वारा हम आत्मिक शांत रहें, अपने अंदर शीतल जल की तरह रखें और जो हमारे पास कोई प्यासा आ भी गया तो उसे भी हम उसकी प्यास बुझाएं, उसको आत्मिक शांति प्रदान करें। तो यही सब पुण्य हमें हमारे पुराण, हमारे वेद, हमारे ऋषि मुनि हमें बताते हैं और ज्येष्ठ मास और आषाढ़ मास में इसी प्रकार से आप भी इस पुण्य को अर्जन करें। आपका मन बहुत खुश होगा, आपकी आत्मा बहुत आनंदित होगी। नमस्कार।
1: विविधा

कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था ज्येष्ठ माह का महत्व। वार्ताकार थे श्री संदीप पाठक। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि 12वीं कक्षा का परिणाम आ चुका है, तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से उनको, उन सभी बच्चों को बहुत बधाई जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए और उनकी मेहनत सफल हुई। 10वीं के बाद जो बच्चे अब 12वीं कक्षा के परिणाम के इंतज़ार में थे, वो इंतज़ार भी अब ख़त्म हो गया और अब ज़िंदगी के अगले पड़ाव में भी उतनी ही मेहनत और उत्साह के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर पाएंगे। बच्चों की मेहनत जब रंग लाती है तो बच्चों के चेहरे तो खिल ही जाते हैं, लेकिन उन खिले हुए चेहरों का नूर माता पिता और गुरुओं की आंखों से खुशी बनकर छलक उठता है, क्योंकि माता पिता भी बच्चों को अच्छी और उच्च शिक्षा देने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। और एक शिक्षक की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शिक्षकों की कोशिश को और उनकी मेहनत को कम नहीं आंका जा सकता। बच्चों का परीक्षा परिणाम जब अच्छा आता है, तब शिक्षकों की स्थिति और खुशी को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। हर बार शिक्षक को ऐसा महसूस होता है कि बच्चों की सफलता के साथ साथ उनके जीवन में वो एक बार फिर से सफल हुए। बच्चों की बेहतर भविष्य की तैयारी करवाने में शिक्षकों के लिए बच्चों की सफलता उनकी खुद की कामयाबी होती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपनी मेहनत के बराबर अंक नहीं ला पाए, वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आगे मेहनत करें और आगे बढ़ें। कहाँ कमी रही वो देखें और बेहतर तरीके से तैयारी शुरू करें। यहाँ अभिभावकों से भी निवेदन रहेगा कि हमेशा बच्चों का उत्साह बढ़ाएं, कभी भी बच्चों की तुलना ना करें। ऐसी स्थिति में बच्चे भावनात्मक सपोर्ट चाहते हैं, उन्हें भावनात्मक सपोर्ट की जो आवश्यकता होती है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है ऐसे समय पर, क्योंकि ऐसे समय पर बच्चे अक्सर निराश हो जाते हैं और वो फिर से अपने आप को मेहनत करने के लिए तैयार नहीं कर पाते। नकारात्मक माहौल बच्चों को हीन भावना का शिकार बना देता है, जबकि सही मार्गदर्शन बच्चों को पिछड़ने से बचाता है।

श्रोताओ, वैसे तो हम सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन कभी कभी अनजाने में अगर हम किसी की छोटी सी मदद करते हैं तो हो सकता है कि हमारी तरफ से तो वो छोटी सी मदद हो, लेकिन उस छोटी सी मदद से किसी को कितनी प्रसन्नता मिलती है वो एहसास बहुत सुकून भरा होता है। क्योंकि दूसरों की को खुशी देने से न केवल उन्हें अच्छा महसूस होता है, बल्कि ये मदद करने वाले के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत फायदेमंद है। ऐसा करने से आंतरिक खुशी, संतोष मिलता है, तनाव में कमी आती है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो एक गहरी आत्मिक संतुष्टि महसूस होती है और ये एहसास जीवन को सकारात्मकता से भर देता है। दूसरों की मदद करने से या उन्हें खुश करने से दिमाग में अच्छा महसूस कराने वाले रसायन निकलते हैं जो तनाव, चिंता और नकारात्मक भावनाओं को कम कर देते हैं। जब हम दूसरों के काम आते हैं तो अपनी उपयोगिता का एहसास होता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मसम्मान भी बढ़ता है। अध्ययनों से पता चला है कि दयालुता और उदारता से रक्तचाप कम हो सकता है, समग्र शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। जब हम दूसरों को खुश रखने का प्रयास करते हैं तो आपसी प्यार, विश्वास और सम्मान बढ़ता है और इससे रिश्तों में मजबूती आती है। दूसरों को खुश करने से आसपास का वातावरण खुशनुमा और सकारात्मक बन जाता है, जिससे हम अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो वे भी दूसरों के प्रति दयालु होने के लिए प्रेरित होते हैं और यह सकारात्मकता एक अंतहीन चक्र बनता जाता है। दूसरों को खुशी देने का अर्थ खुद को थका देना या केवल लोग क्या कहेंगे कि डर से जरूरतों को नज़रअंदाज करना नहीं है। सच्ची खुशी निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने में निहित है। जब हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास पक्षी हैं, पशु हैं और इतना गर्मी का मौसम है, अगर हम एक बर्तन में उनके लिए थोड़ा सा पानी रखते हैं और हमारा रखा हुआ पानी जब कोई पशु पक्षी आकर पीता है तब भी हमारे मन को बहुत प्रसन्नता मिलती है और हम वो काम रोज़ करने के लिए प्रेरित रहते हैं और हम उसे अपनी एक ड्यूटी, एक कर्तव्य समझ लेते हैं कि हमें वो काम करना ही है। पक्षियों के बर्तन में,

पशुओं के बर्तन में जल भरकर हमें रखना ही है, क्योंकि गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों की प्यास बुझाना बहुत ही बेहतर कोशिश होती है, क्योंकि वो बेजुबान पशु पक्षी आपसे आकर पानी मांग नहीं सकते, लेकिन हमें पता है कि जितनी प्यास हमें लगती है उतनी ही उन्हें भी लगती है। तो ये गर्मी के मौसम में एक छोटा सा प्रयास है पशु पक्षियों की मदद करने का।

और श्रोताओं, गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो पानी की होती है, तो पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें और पानी की बचत भी करें, क्योंकि गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा समस्या भी पानी की ही होती है। तो पानी को व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में लोग पानी की समस्या से बहुत जूझ रहे होते हैं, उन्हें पीने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता। तो हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम पानी को बर्बाद होने से बचाएं, और गर्मी के मौसम में ही सबसे ज़्यादा जो लोग मज़ा लेना चाहते हैं वो स्विमिंग पूल का होता है। स्विमिंग पूल में नहाने का मज़ा लेने के शौकीन बहुत सारे लोग होते हैं, और आजकल बच्चे भी तैराकी का शौक रखते हैं, तो वो भी शुरू से ही तैराकी सीखने की इच्छा रखते हैं और पूल पर जाते भी हैं। तो स्विमिंग पूल में नहाने का मज़ा लेते समय स्वास्थ्य संबंधी और सुरक्षा संबंधी कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, ताकि आप किसी भी तरह के इन्फेक्शन का शिकार होने से बचे रहें, क्योंकि पानी में मौजूद जो क्लोरीन होती है और कीटाणु जो होते हैं उनसे बचने के लिए कुछ सावधानियां होती हैं। जैसे पूल में उतरने से पहले कम से कम आपको 1-2 मिनट तक शावर लेना चाहिए, ताकि शरीर पर जो धूल होती

0: है या पसीना होता है या आपने किसी तरह की अगर क्रीम इस्तेमाल की होती है वो निकल जाए, ये क्लोरीन को त्वचा को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। खुले स्विमिंग पूल में जाने से 30 मिनट पहले वाटरप्रूफ सनस्क्रीन लगाएं ताकि टैनिंग और सनबर्न से आपका बचाव हो सके। क्लोरीन से बालों को होने वाले नुकसान से बचने के लिए उन पर हल्का तेल आप लगा सकते हैं और स्विमिंग कैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्री स्विमिंग जो बॉडी लोशन होता है उसका उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो क्लोरीन के खिलाफ एक सुरक्षा परत बनाता है जिससे आपको किसी भी तरह की जलन या किसी अन्य तरह की एलर्जी की समस्या नहीं होती। और स्विमिंग पूल में जाने से पहले अपने पैरों को बहुत अच्छी तरह धोएं। स्विमिंग पूल में जाने से पहले ये ध्यान रखें कि आप अपने शरीर को पूरी तरह से साफ करके फिर ही स्विमिंग पूल में उतरें ताकि पानी में आप किसी भी तरह की गंदगी ना छोड़े और उसमें किसी भी तरह की गंदगी को फैलने से बचाएं। ये सभी का कर्तव्य होता है जो भी स्विमिंग पूल में जाते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और स्विमिंग पूल का पानी गलती से भी अपने मुंह में या अपने पेट में ना जाने दें क्योंकि इस पानी में कीटाणु हो सकते हैं और आप बीमार हो सकते हैं। स्विमिंग पूल में जब आप ट्रैक पर चलते हैं तो पूल के किनारे पर फिसलने का डर होता है, तो इसलिए सावधानी से वहाँ पर चलें और उस जगह पर बिल्कुल भी दौड़ें या तेज़ चलना वहाँ पर ध्यान रखें कि आप तेज़ चाल ना चलें और भागें भी नहीं क्योंकि वहाँ पर फिसलने से आपको गंभीर चोट आ सकती है। बच्चों को कभी भी बिना किसी बड़े की देखरेख के पूल में अकेला ना छोड़ें। जब भी बच्चे पूल में उतरें तो उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी देखरेख के लिए कोई वहाँ पर होना चाहिए। साथ ही साथ अपनी क्षमता के अनुसार ही गहराई वाले क्षेत्र में जाएं क्योंकि पानी की जहाँ ज़्यादा गहराई होती है वहाँ पर जिनको अच्छे से तैराकी आती है उन्हें ही जाना चाहिए या फिर किसी की देखरेख में जाना चाहिए। भले ही आप पानी में हो लेकिन आपको प्यास लग सकती है, लेकिन आपको पूल का पानी अपने अंदर नहीं जाने देना है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है तो अपने पास साफ पानी की बोतल रखें, अब उसी पानी को पिएं क्योंकि जब आप पानी में होते हैं तब भी ऐसा नहीं है कि आपको प्यास नहीं लगेगी। खासकर जो पूल खुले में होते हैं वहाँ पर आपको अपने साथ अपना पानी ज़रूर रखना है। और पूल से निकलने के बाद भी आपको तुरंत साफ पानी से साबुन से नहाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि क्लोरीन को त्वचा से हटाने के लिए गुनगुने पानी और साबुन की आवश्यकता होती है। उसके बिना क्लोरीन का असर जो होता है वो शरीर से नहीं जाता। नहाने के बाद भी शरीर पर लोशन या मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं ताकि पूल के पानी से त्वचा रूखी ना रहे। और अपने कानों को बालों को अच्छी तरह से साफ करें ताकि आप संक्रमण से बचे रहें। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप स्विमिंग का मज़ा ले पाएंगे।
1: ओ ठंडे ठंडे पानी से ना

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे आकाशवाणी का, ये रोहतक केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों के बाद आप सुनेंगे समाचार। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
2: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
3: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
4: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का 4वां सबसे बड़ा आपूर्ति करता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। LNG के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
3: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और कालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ

0: लाई जाएगी।
1: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
2: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्य सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
5: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
6: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल

0: 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। दो दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
1: अमरीकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमरीका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराइकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2,441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: और इसी के साथ ही आज का लोक संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। लोक संगीत कार्यक्रम में आज कलाकार थे दीपचंद, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। और अब श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो रोहतक। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अनीता पाराशर। और कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपको फ़ोन नंबर्स हम बता देते हैं 255-446, 255-447 और 255-448। 01262 रोहतक का STD कोड है। तो आप इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं और अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं। और हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग अनीता पारासर मैडम जी।
0: जी नमस्कार, नाम बता दीजिए।
1: मेरा नाम है श्रीकांत जोशी, गांव का नाम लासुरगांव, डिस्ट्रिक्ट छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र।
0: जी तो आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीकांत जी।
1: और आप, जी हाँ, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक महीने के अंतराल में आज कॉल किया मैंने।
0: अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। आप अपने अपने दूसरे,
1: एक महीने के अंतराल में कॉल कर रहा हूँ। और बाकी जो ईमेल का प्रोग्राम आता है ना,
0: हाँ जी,
1: संडे को मैं ईमेल भी भेजता हूँ।
0: जी बहुत अच्छी बात है। और आपने इस नियम को निभाया और निभाना शुरू किया कि आपने स्वयं से ही एक महीने के अंतराल पर फ़ोन किया है और अपने दूसरे श्रोता साथियों को अवसर दिया है कि वो भी फ़ोन करके अपनी पसंद का गीत सुन सकें। तो ये काबिले तारीफ है आपने जो काम किया है। तो चलिए बताइए, अभी कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: आज मुझे ये प्रेम रतन धनबायो का टाइटल सॉन्ग शीर्षक गीत सुनने का है।
0: जी तो प्रेम रतन धन पायो फिल्म का शीर्षक गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं श्रीकांत जी। और आपने कार्यक्रम में फोन किया, इसके लिए आपका शुक्रिया।
1: शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद आपका।

जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

0: और अब लेते हैं आज के इस कार्यक्रम की अगली कॉल, देखते हैं कौन हमारे साथ लाइन पर हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते।
0: जी, नमस्कार, नाम बताइए।
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ आपसे, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से। क्योंकि
0: जी सतीश
1: आपका
0: जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी
1: जी,
0: बताइए।
1: धन्यवाद मैडम जी। और आपका अभी तो आकाशवाणी का जो प्रोग्राम हुआ था, तो आकाशवाणी का जन्मदिन की ढेर ढेर शुभकामनाएं।

0: जी धन्यवाद।
1: लेकिन 8 तारीख को हुआ था, मैंने फोन भी लगाया था, मुझे पता था, तो मैंने भी फोन लगाया था 9 बजे। तो बहुत अच्छा था प्रोग्राम, आपके रोहतक के प्रोग्राम के सुनने में बहुत आनंद आता है मुझको।
0: जी जी बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और आपको आकाशवाणी रोहतक का जो जन्मदिन है वो भी आपको याद था, स्थापना दिवस, और बहुत अच्छी बात है। चलिए आज बताइए कौन सा गाना आपको।
1: सभी अनाउंसर आपके आकाशवाणी में सभी बढ़िया हैं, और सभी प्रेम से बात करते हैं,
0: जी
1: और
0: आपका
1: सभी
0: बहुत
1: मुझे
0: बहुत
1: पहचानते
0: धन्यवाद।
1: हैं, सभी पहचानते हैं। लेकिन एक कमी है, जो उसका नाम, एक अनाउंसर आते हैं लिरिक्स है ना, कोई आते हैं उनका नाम ध्यान भूल गए, तो वे मेरी कॉल काट देते हैं, तो बहुत
0: जी
1: बुरा। जब
0: नहीं,
1: कॉल लगाने
0: आपकी
1: में कटर लग गई है
0: कॉल
1: तो
0: कोई
1: बहुत
0: नहीं
1: बुरा।
0: काटता है, सुनिए मेरी बात सुनिए। हम जब भी किसी का फोन आता है तो कॉल काटने का तो
1: नहीं
0: कोई
1: आप नहीं, वो सर आते हैं तो भी नाम नहीं पूछते, कॉल उठा रहे थे कहाँ से बोल रहे, तुरंत काट देते हैं। तो किसी को नाम तो पूछना चाहिए कैसे, तो बंदा किसी कहीं भी लगाता तो बड़ी मुश्किल से कॉल लगती है। मैम ऐसे लगती है वो कहावत नहीं है, जो लोहे चबाने नहीं, तैसे ही कॉल लगाने पड़ती है इसमें।
0: जी, चलिए कोई बात नहीं, ये कुछ लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, बल्कि देखते हैं बात करते हैं, वैसे ऐसा नहीं होगा। आप बताइए आज कौन सा गाना सुनेंगे सतीश जी।
1: नहीं आप लोगों तो मेरी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को मेरी बात हो जाती है, लेकिन यह है कोई के नाम सर आते हैं हरकत करते हैं, इसलिए
0: जी चलिए कोई बात नहीं, अभी आप बताइए गाना कौन सा
1: आज
0: सुनेंगे।
1: आज फिल्म का नाम है दीवाने, गाने बोला है कयामत कयामत, ये प्ले कर दीजिए
0: जी
1: गाना, और
0: सुन
1: ये गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ आपके लिए, गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ जितने तमाम सुनने वाले सबको गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ। आंसर है
0: जी,
1: आकाशवाणी में रोहतक
0: सुनिए
1: में
0: अपनी
1: रहते।
0: पसंद का ये गीत। सतीश जी कार्यक्रम में फोन किया आपने, इसके लिए आपका शुक्रिया।

0: हेलो हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्कार। नाम बताइए।
1: सुशीला जी बोल रहे हैं, गांव शेरड़ा से, बादरा तहसील से। हाँ
0: जी, सुशीला जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप आज के कार्यक्रम की पहली महिला कॉलर हैं।
1: ये तो है ही जी मैम।
0: जी बताइए, अपने बारे में बताइए सुशीला, क्या करती हैं आप?
1: सिलाई का काम करती मैम।
0: अच्छा, आप सिलाई का काम करती हैं और साथ साथ में रेडियो भी सुनती हैं, हमारे कार्यक्रम सुनती हैं।
1: हाँ मैम, सुनती है, तभी तो फोन किया मैंने।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। तो
1: और आप
0: बताइए।
1: कैसे हो?
0: हेलो
1: हेलो, आप कैसे हो मैम?
0: जी, हम बहुत अच्छे हैं और जब हम आप लोगों से बात करते हैं तो हम और भी अच्छे हो जाते हैं, बहुत खुशी होती है हमें।
1: ये तो है ही मैम। दिन
0: जी बताइए, कौन सा गाना सुनेंगी?
1: देरी मेरी बात नहीं आती, ये गाना सुना दो मैम, मुस्कान।
0: मुस्कान फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सुशीला जी, और कार्यक्रम में आपने फ़ोन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू मैम।

0: हेलो।
1: नमस्कार, सुप्रभात एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दीदी अर्चना जी। अनिता
0: जी नमस्कार।
1: दीदी, कैसे हैं आप?
0: जी मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। सुंदरपाल जी बताइए, कौन सा गाना सुनेंगे
1: दीदी,
0: आज?
1: रिक्वेस्ट है, एक मेरी थोड़ी सी करबद्ध आग्रह अनुरोध है श्रोता साथियों से कि वो केवल संग परिचय और फिल्म का नाम और बताओ बहनों, तो फिर और श्रोता जो बेचारे दो दो महीना में नंबर पड़े, फिर उनका नंबर पड़े कौन कर देगी।
0: जी, आपने करबद्ध जो उनसे प्रार्थना है ये कर दी है, निवेदन कर दिया है और उन्होंने सुन भी लिया है, तो ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत कम बातचीत में अपनी पसंद का गीत सुना जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए बताइए सुंदरपाल जी आप।
1: दीदी मैंने समय नहीं दूंगा, पर एक रात तीसरा गीत है दीदी, मुकेश
0: जी
1: की आवाज है। आज
0: जी
1: तुमसे दूर होकर ऐसा रोया मेरा प्यार, चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार।
0: जी तो सुनवा दें आपको आपकी पसंद का ये गीत।
1: बिल्कुल दीदी, धन्यवाद।
0: जी आपका भी धन्यवाद, और सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हेलो
5: तारिक, कैसे करें आपकी हर लफ्ज खुशबू आ रही गुलाब की।
4: जी बहुत खूब।
5: सीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से। आपके
4: जी कार्यक्रम में स्वागत है आपका बहुत बहुत। और बताइए कौन सा गाना सुनेंगी?
5: फिल्म का नाम है जाने माने, गाने के बोल हैं।

जी बहुत बहुत बेहतरीन आप गाती हैं, बहुत सुंदर गाती हैं। और अभी आप सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में आपने फोन किया, इसके लिए आपका शुक्रिया।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार। नाम बताइए
1: मैं जी राजेंद्र यादव रायपुर तहसील बौना झुंझुनू से बोल रहा हूँ जी।
0: जी। राजेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप अपना जो रेडियो सेट है उसको थोड़ा दूर हटा दीजिए।
1: नहीं जी, दूर ही हूँ जी, दूर ही हूँ।
0: चलिए बताइए, कौन सा गीत आप सुनेंगे?
1: जी फिल्म का नाम है जी विश्वास, मुकेश जी की आवाज है जी।
0: गाने के बोल बताइए
1: गाने के बोल हैं जी, चांदी की दीवार ना तोड़ी।
0: जी। तो सुनवा दें आपको आपकी पसंद का ये गीत राजेंद्र जी।
1: ठीक है जी, धन्यवाद।
0: जी, आपका भी धन्यवाद।

0: हेलो
1: नमस्कार जी।
0: जी। नमस्कार
1: मैं तौर से राम देव बोलूँ नीता जी, ठीक हो जी? ठीक
0: जी। बिल्कुल रामदिया जी, आप कैसे हैं
1: है जी नीता जी।
0: जी? बताइए गाना कौन सा सुनेंगे?
1: गाना कुमार सानू की आवाज में कोई भी गाना सुनवा दीजिए।
0: जी ठीक है, एक गाना हम आपको सुनवा रहे हैं जो अभी आपने सुनना चाहा था।
1: ठीक है जी नीता।
0: जी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत जो कर्ण अर्जुन फिल्म से आपने चुना था।
1: ठीक है जी, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार,
0: जी। नमस्कार, नाम बताइए।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: जी राकेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए कौन सा गाना
1: सतीश नहीं,
0: सुने।
1: मैं राकेश बात कर रहा
0: हेलो
1: हूँ। जी मैं राकेश बोल रहा हूँ शिमला से।
0: जी, बिल्कुल हम ने सुन लिया आपका नाम। और अभी बताइए कौन सा गाना सुनेंगे राकेश जी।
1: जी बेवफा मूवी का गाना सुनना है।
0: बेवफा सनम,
1: जी,
0: जी कौन सा गाना सुनेंगे इस फिल्म का।
1: उसमें अभिजीत की आवाज में गाना है, आती है रात तोड़े
0: जी तो
1: हुए दर्द का।
0: जी सुनवा दें आपको आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी बिल्कुल सुना दीजिएगा।
0: जी कार्यक्रम में आपने फोन किया इसके लिए आपका शुक्रिया।
1: जी धन्यवाद।

0: और अब लेते हैं आज के इस कार्यक्रम की अंतिम फोन कॉल। हेलो
1: नमस्कार मैडम जी।
0: जी नमस्कार, नाम
1: मैडम जी,
0: बताइए।
1: श्यामलाल बोल रहा हूँ, श्री गंगा राजस्थान से जी।
0: जी श्यामलाल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए कौन सा गाना सुनेंगे।
1: मैडम जी फिल्म राजपुत्र के सुनेंगे, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला।
0: जी बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ही अच्छे बोल हैं इसके, तो सुनवा दें आपको आपकी पसंद का ये गीत।
1: हाँ जी सुनवा दें।
0: जी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में आपने फोन किया इसके लिए आपका शुक्रिया।
1: धन्यवाद मैडम।

0: और इसी के साथ ही आज का ये फ़ोन इन कार्यक्रम हेलो रोहतक अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजते हैं, कुछ क्षणों के बाद आप सुनेंगे समाचार। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
3: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने ये जानकारी दी। ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ, अमेरिका और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपये और तिल के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी है। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इस नौसेना की संचालन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की भी समीक्षा की। नौसेना प्रमुख ने बंगाल की खाड़ी में पूर्वी बेड़े की तैयारियों का भी जायजा लिया। आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक है। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। उत्तर प्रदेश में बारिश, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में कल 60 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में आज बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अब हमारी आज की पहली प्रसारण सभा संपन्न होती है। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले जारी रहेगा। दूसरी सभा में दिन में 12:30 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। समय हुआ है दोपहर के 12:30 और 12 सेकंड। हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है NCERT द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हरख राम।

0: पटेल, कुंती पटेल भूमि और चंचल पटेल,
1: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना,
0: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल
1: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
0: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का
0: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
1: जी श्रोताओं, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
0: जी
1: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी। जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
1: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
0: जी,
1: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
0: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
1: इसके मुख्य लक्षण हैं चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
0: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
1: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
0: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
1: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
0: ठंडा करने के लिए उसे एक कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
1: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वो सांस भी ठीक से ले पाएगा।
0: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
1: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें। उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या न करें,
0: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं।
0: जी।
1: तो भाई, मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी।
0: जी,
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
0: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारु और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारु चले घास लेने।
1: घास घास थोड़ी सी घास ले ले,
0: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
3: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
0: कमली और सोमारु चले पानी लाने।
1: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
3: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारु चले बादल लाने।
1: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो, थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
4: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारु चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
5: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
6: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारु ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारु ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
7: तो बच्चों, सुना आपने, बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेंढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
8: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
2: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
3: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
4: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। पर ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
3: आजा खेलते हैं।
4: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
5: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
4: अच्छा वो क्या?
5: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
6: हाँ दूसरा क्या?
5: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
3: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे। शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था, और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक

0: भी मुश्किल है।
1: बहुत मुश्किल है। बिल्कुल।
2: देखो चुन्नी लाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है। ये देखो, पास आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
0: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते से।
2: बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ।
3: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
4: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
2: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
4: जी।
0: अच्छा।
3: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
2: उधर से दुश्मन आ रहे हैं, फायरिंग।

0: अरे नहीं, यही रोक कर रखना, मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूँ।
1: ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैन गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड, वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सर जी, थैंक यू।

नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आपने सुना NCERT द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। उसके ठीक बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले किए जाएंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
5: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
4: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान उनके नाम की घोषणा की। पूर्वोत्तर क्रिकेट और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। ये फेमा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चीन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा के लिए बेहद उत्सुक हैं। श्री जिनफिंग ने ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: का भी प्रतीक है। इस अवसर पर पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ।

अभी आपने सुना समीर का लिखा ये गीत, फिल्म प्यार किया तो डरना कैसे। आवाज़ें थी अलका याग्निक और कुमार सानू की, संगीत था जतिन और ललित का। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत संजीव दर्शन का। फिल्म का नाम कितने दूर कितने पास।

अभी आपने सुना ये शीर्षक गीत फिल्म कितने दूर कितने पास से। इस गीत को आवाज़ें दी थी उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने। श्रोताओं, आइए अब समय हुआ है एक संदेश का।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में

0: 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

अभी आपने सुना फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे से ये गीत लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया था राहुल शर्मा ने। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में, बोल समीर के संगीत नदीम और श्रवण का। फिल्म का नाम राज।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाए आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर, आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
4: आकाशवाणी रोहतक से अभी आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में, शब्द रचना समीर की, संगीत नदीम श्रवण का। फिल्म का नाम हम हो गए आपके।

अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म हम हो गए आपके से ये गीत। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण की जोड़ी ने। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं एक संदेश।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में

0: 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

अभी आपने सुना फैज़ अनवर का लिखा ये गीत फिल्म तुम बिन से। इस गीत को आवाज़ें दी थी उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने, और संगीतबद्ध किया था निखिल और विनय की जोड़ी ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म आवारा पागल दीवाना से।

अभी आपने सुना सोनू निगम, अलका याग्निक, शान, उदित नारायण, सारिका कपूर और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में फिल्म आवारा पागल दीवाना से ये गीत। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म प्यासा से।

0: दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबूधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुँचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व सरमा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादर

0: और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा

0: कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम खेत खलिहान।

खेत खलिहान कार्यक्रम सुनने वाले सारे भाण भैया ने आनंद भाई की राम राम। और फिलहाल भाई अपना जो टाइम है वो जेठ का भी ना चल रहा है, लेकिन गर्मी की अगर बात करी जाए तो भाई वो अपनी जमीन के धरती तपन वाली लू भी नहीं लागी हैं, क्योंकि इन दिनों में देखा जाया करता कि भाई तापमान इतना होया करता कि जो गहरी जुताई थी उसका बहुत सा महत्व था। क्योंकि जब गहरी जुताई हम करा हाँ तो इसमें काफ़ी हद तक जो है चाहे वो खरपतवारा की बीजा की अगर बात आओ है या फिर इसके अलावा भाई नू देखे हैं कि जो सूत्रकृमि है कुछ नीमाटोड है तो भाई ये ख़त्म हो जाते, और जब लू ला गया कर दी तो भाई ज़मीन की जो तासीर थी वह उपज की शक्ति थी वह भी अपनी बढ़े थी। लेकिन मौसम में भाई वह कितन कितने भाई कितने बादलवाई कितान दी अंधड़ के साथ हल्की फुल्की गरज चमक बूंदा बांदी कायपती रहिए जा है। और ईब चाहे अपने अगर चाल की भाई फसला की बहुत से भाई तैयारी भी करेंगे, चाहे उसमें हमने कितने दाना की प्योद बनानी है या फिर कितने भाई हमने नू देखे हैं कि अरहर की बिजाई करनी है या भाई अपनी कपास का टाइम भी चल रहा है। और लगभग ये देखा हाँ कि जो अपनी कुछ साल भरते की खड़ी उड़ी फसलें हैं भाई उसमें चाहे हम गन्ना लगा ले हैं या फिर और अपनी जो सब्जी फसलें बीच में घनी आ जाए हैं, क्योंकि मूली है अपनी ये भी देखे हैं चाहे पालक की काश्त है, तो भाई सारा टाइम लगभग हर एक चीज़ का कुछ फसलें ऐसी हो रही हैं चाहे वो सब्जी फसलां भी हैं कि भाई बारह मास उगाई जा सके हैं, चाहे पालक होगी अपनी या फिर इसके अलावा अपना भाई नू देखें मूली होगी। और जड़ती बात आओ भाई साल भर की अपनी खड़ी फसलां भाई गन्ना

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जब पूंजी सकल चली जाएगी

जीवन के घोड़े जोड़ चला। अरे पाप पुण्य तो पहिए बना के बैठे रथ में दौड़ चला। अहमता ममता की दो डंडी।

मन स्वार्थी बुद्धि अंत करने स्थान किया रे मोहसोग की दो चुरी बना के पंच कर्म गति ज्ञान किया सात धाति और पांच सामग्री विषय रूप सामान किया सब रण के वस्त्र पहन रजोगण अक्षय का धारण पान किया रण के वस्त्र पहन रजोगण अक्षय का ये रख कर्तव्य होगता मैं करने

प्रकृति विसर राग द्वेष के धनुष बाण कर हाथ लिए। ज्ञानवती सत्य बुद्धि को तज सोच विषय उत्पात लिए। रे महान निर्दयी करूर चित राजा कर पशुओं से काट लिए। महान निर्दयी ओ नो नहीं सोचा के जीव

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तो भैया नाराग नहीं भी सुनी और कुछ विज्ञापन भी, लेकिन अपना जो खेती बाड़ी में जिक्र चल रहा था भाई, ये जो अपना अरहर की कास्ट है इसके बारे में, क्योंकि अपना हरियाणा में अरहर की तुअर की खेती के लिए भाई लगभग बढ़िया किस्म अपना पूसा 992, पूसा अरहर 16 मानक और उपास 120, तो ये बहुत बढ़िया किस्म है भाई, नाम चुनाव करें। और जागृति के नाम से भी प्रमुख उन्नत किस्में हैं ये किस्में भाई, 120 से लेके 145 दिनों में पाकी तैयार हो जाए हैं और लगभग 6 से लेके 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इस मामले में पैदावार भी मिल जाए है। और IARI के अनुसार भाई लगभग अपना उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाके में हरियाणा के लिए अनुकूल किस्में बहुत बढ़िया है ये। तो ये देखे हैं हरियाणा के लिए भी अनुसंसाधित जो अपनी अरहर की किस्में हैं भाई, पूसा अरहर 16, पूसा या जल्दी पकड़ वाली किस्म 120 दिन में तैयार हो जाए है भाई, पूसा 992 है, या किस्म भी हरियाणा और पंजाब के अपना लगभग राजस्थान के कुछ इलाके के लिए बहुत ही बढ़िया मानी गई है। और इसके अलावा फिर मानक है, यह किस्म भी थोड़ी कम अवधि में अगेती वाली किस्म है जो जल्दी कटाई के बाद रबी फसलों के लिए जगह भी छोड़ दी हुआ है। और पूसा अरहर भाई लगभग अपनी 2018 में 4 और या न्यू देखा 140 से 145 दिनों में पाकी तैयार हो जाए है, तो बहुत ही बढ़िया पैदावार देने वाली ये किस्में हैं। उपास 120 के नाम तो भी यह भी एक अगेती किस्म है जो सूखा न भी प्रतिरोधी इसकी क्षमता रख जाए है। तो बुआई का समय की अगर बात करी जाए तो भाई जून का जो अंतिम सप्ताह तय लेके जुलाई का मध्यम तय है इसकी बिजाई जो हम कर सके हैं, तो टेम यो बढ़िया रहेगा और पैदावार लगभग भाई 6 से लेके 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें हमने पैदावार भी मिल जाएगी। फसल चक्र के लिए भाई अरहर का और बाद में जो गेहूँ आलू या फिर सरसों की जो बुआई इसमें ठीक रहा है। उन्नत बीजा के लिए भाई किसान भैया ने IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या फिर स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र KVK से संपर्क हम कर लें। सबसे बढ़िया ये रहा है कि अपनी जो उन्नत किस्में हैं इनकी हम खरीदारी करें, बढ़िया ज़मीन तैयार करें, बढ़िया खाद डालें, जब जाके किसान भाई ने बढ़िया पैदावार इसमें मिल पाओ है। तो भाई अनेक रागनी और सुनवा दें गायक कलाकार एक बार फिर, मास्टर सतबीर भैंसवाले और उनके साथी।
4: ज्ञान बहुत सा रूप गजब का, अकलमंद बचेरी दर्शन होगी उपवन में हुई आनंद आत्मा मेरी, ज्ञान बहुत सा रूप।

नीरज बिना धारणा कैसी, बिन सरवण किसी सेवा। गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता और सेवा बिन किसी मेवा। कर्म बिना

खेल खेलावाने लागे। एक शक्ति दोनों के बीच तीर चलावाने लागे। अरे ईश्वर व्यापक जड़ चेतन की डोर लावाने।

किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेत खलिहान। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होते हैं। हालांकि FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर शाम 5:30 पर तीसरी सभा में आपसे फिर भेंट होगी।

को अगला गीत जो है फिल्म आए दिन बहार के, गाया है आशा भोसले ने, गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

भूमिका प्यारे लाल ने। और अब कार्यक्रम में बात कर लेते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द हम सबको बनाए रखना चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सांप्रदायिक सद्भाव ही समाज की असली ताकत है, क्योंकि एकता में ही देश की प्रगति छिपी होती है। जी हाँ साथियों, सांप्रदायिक सौहार्द का अर्थ है सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के लोगों के बीच प्रेम, भाईचारा, सम्मान और एकता की भावना बनाए रखना। भारत एक विविधताओं से भरा देश है, जहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं मिलजुल कर देश

तो हमारा देश और अधिक शक्तिशाली तथा समृद्ध बन सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें और समाज में शांति एवं भाईचारे का वातावरण बनाए रखने में अपना योगदान दें। और एक बार हम फिर से कह सकते हैं कि धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ा

सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर

कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में दो दिन घर से काम करेंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आईपीएल

सुभाष दिनांक 12/5/2026 से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। रंग गोरा, लंबूतरा चेहरा, हष्टपुष्ट शरीर, काली टी शर्ट और चॉकलेट कलर की लोअर पहनी है, पैरों में सफ़ेद रंग की चप्पल।

0: रहे हैं।
1: उन्होंने कहा कि रिफाइनरियां अधिकतम क्षमता पर चल रही हैं और एलपीजी कनेक्टिविटी में भी वृद्धि हुई है। सुश्री सुजाता शर्मा ने कहा कि वाणिज्यिक एलपीजी की बहाली में लगभग 70% तक पहुंच गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल के सदस्यों सहित 90,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी ले जा रहे दो जहाज कल रात हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए। उनके शनिवार को देश पहुंचने की उम्मीद है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की जनता ने विकास, सुशासन, पारदर्शिता और राष्ट्रवाद की राजनीति को खुले दिल से स्वीकार किया है। निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक और एकतरफा जीत इस बात का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने इस ऐतिहासिक विजय के लिए प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री आज पंचकूला में भाजपा मुख्यालय में नगर निकायों के नवनिर्वाचित महापौरों, प्रधानों एवं पार्षदों के सम्मान में आयोजित समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की परिवारवाद, झूठ, भ्रम और नकारात्मक राजनीति को पूरी तरह से नकार दिया है।
2: देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और कांग्रेस लगातार झूठ फैलाने का काम कर रही है, लोगों के अंदर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आज कांग्रेस हो उसके झूठ का, चाहे उन्होंने लोकसभा के अंदर फैलाया, भी मोदी जी आगे तो संविधान को खतरा हो जाएगा। कभी ये लोकतंत्र को खतरा बताते हैं, कभी ईवीएम के अंदर गड़बड़ बताते हैं, कभी ये वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। और जब अभी राहुल बाबा हरियाणा के अंदर आए, कहने लगे ये तो घुसपैठियों की सरकार है। इस प्रकार का ट्वीट दुर्भाग्यपूर्ण है, ये लोकतंत्र का अपमान है।
1: उन्होंने भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों से गरीब और किसान सशक्त हुए हैं तथा महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने निकाय चुनाव में विजयी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए उनसे जनता की आशाओं और आकांक्षाओं पर

उन्होंने आगे बताया कि सेकेंडरी परीक्षा में बैठे 4,556 स्वयं पाठी परीक्षार्थियों में से 3,190 पास हुए हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि सेकेंडरी मुक्त विद्यालय की परीक्षा में 5,772 परीक्षार्थी प्रथम बार प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 645 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। पास प्रतिशतता 11.17 रही। उन्होंने बताया कि सेकेंडरी मुक्त विद्यालय रीअपियर का परिणाम 47.64% रहा। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आज गुरुग्राम जिले में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी करीब 2,86,00,000 रुपए की विकास परियोजनाओं जनता को समर्पित की। इस अवसर पर पाटौदी की विधायक श्रीमती बिमला चौधरी भी मौजूद रही। स्वास्थ्य मंत्री ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें उपमंडल नागरिक अस्पताल हेली मंडी में लगभग 50,00,000 रुपए की लागत से बनाया गया ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, गांव चंदू में लगभग 89,45,000 रुपए की लागत से नूरगढ़ में निर्मित सामान्य उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन और नहचाना गांव में 64,83,000 रुपए की लागत से निर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट पटौदी खंड के लिए डायग्नोस्टिक हब के रूप में कार्य करेगा, जहां विभिन्न लैब जांच सुविधाएं

0: आदि देव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लीयते यत्र विश्वम। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं। जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में यहाँ सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के पुनः स्थापना का जिक्र करते हुए कहा कि यह केवल अतीत का उत्सव नहीं, अगले 1000 वर्षों के लिए प्रेरणा का महोत्सव है।
0: साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इस

0: अशोक भाटी जी अपना चौपाल में आए थे, तो भैया जी सुनवा दे हैं ये बातचीत।
1: भाइयों, बात हम करते हैं जल संरक्षण की, और खेतीबाड़ी में ख़ास तौर पर पानी की बचत बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कि हम जब खुला पानी देते हैं, चाहे बागों में या अपने फसल में क्या है, में तो पानी बहुत खर्च हो जाए और नीचे

0: देख रहे हैं कि वो जा रहा है, और उसको बचाने के लिए भी सरकार बड़ी गंभीर है और अधिकारी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। एक हमने टीम भी बनाई हुई है गांव के गांव में, हम लोग सारा प्रयास कर रहे हैं कि वो ज़मीन का जो पानी है वो रुक जाए, ताकि वो इतना गहराई में ना जा पाए कि हम उसको निकाल भी ना पाए।
1: चलो आज खेती की बात करते हैं। खेती बाड़ी के अंदर आप क्या लोगों को बताते हो, किस तरह से उनको बताते हो, चेताते हो कि भाई आप खेती में पानी का समुचित इस्तेमाल करें, ढंग से इस्तेमाल करें, कौन कौन सी विधियां जो है उनको बताई जाती है?
0: खेती एक जो है, क्योंकि बड़े ज़्यादा मात्रा में पानी की उपलब्धता जो है ना खेती में इस्तेमाल होती है हमारी,
1: हाँ
0: ज़मीन
1: जी
0: का, खासकर संपूर्ण भाई ज़मीन का पानी,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ज़मीन का पानी जब हम लोग इस कृषि क्षेत्र के अंदर देखते हैं तो बड़ी तेज़ी से ज़्यादा पानी बड़ी मात्रा के अंदर इसमें इस्तेमाल करते हैं। इससे ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना हो इसलिए हमने भिवानी जैसे एरिए के अंदर जितने भी आपके बालडा है या लोहारू है या भिवानी का क्षेत्र भी है या दादरी का भी है और आपका बहल भी है, इस क्षेत्र में हमने जो कम पानी की जो फसलें हैं उनको उगाने के लिए, हमने सब्जियां उगाने के लिए उनको बोला है किसानों को, और कि भाई आप ये सब्जियां उगाएं, ये फल उगाएं और ये आपकी फसल उगाएं ताकि कम पानी की जरूरत हो, और ऐसी किस्में उगाएं जिसमें पानी की कम खपत होती है। किस्में भी इसके अंदर हमारा कृषि विभाग भी हमें बड़ा सपोर्ट कर रहा है, बड़ा सहयोग कर रहा है, हम लोग कृषि विभाग के साथ में भी गांव-गांव में हमने कैंप लगाए हैं। दूसरा हम लोग उनको जो है वर्षा जल संचय
1: के ऊपर हम लोग उनको, हाँ उनको,
0: क्योंकि वो ज़मीन का जब वो जब भी वर्षा का पानी एक इकट्ठा कर लेते हैं अपने खेत के पास में ही जगह मिला के, तो वो ज़मीन का पानी फिर उनको जरूरत नहीं पड़ती है, वो उससे ही उसको खेती के इस्तेमाल कर सकते हैं 2 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए।
1: या हम खेती बरसात के पानी को अशोक जी नीचे तक ले जाएं, चोवा तक, चोवा थोड़ा सा ऊपर आ जाए,
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: हैं वो अगर हम कर सकते हो।
0: हाँ
1: तो
0: ये कई स्थानों पे इसमें काफ़ी अच्छी सफलता मिली है, क्योंकि जहाँ पे 500-600 फुट पानी चला जाता है नीचे तो उसको तो चलो बरसात के पानी से हम लोग नहीं कर पाते, पर जहाँ पे 20-25 फुट पे पानी है और 30 फुट पे पानी है, 40 फुट पे पानी है, वहाँ पे बरसात का पानी हम लोग उसमें जमा करके और उसको पानी को ऊपर ला सकते हैं, ताकि वो बरसात का पानी जो है ज़मीन को लेवल को, ज़मीन के जो पानी का जो लेवल है उसको ऊपर लाने में काफ़ी सहायक होता है,
1: सहायक हो जाता है। अच्छा बहुत सा पानी नीचे का ऐसा है अशोक जी जो पीने लायक नहीं है।

0: फसल के हिसाब से, पौधे के हिसाब से, तो उसको वो पानी उतना ही मिल जाता है, और वो पानी की काफ़ी बचत होती है इस प्रणाली के अंदर, और इसका
1: बच्चे
0: बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचा है, बहुत ज़्यादा
1: बिल्कुल
0: फायदा जो है ना
1: अशोक जी,
0: किसानों को
1: आप
0: पहुँचा है इससे इसका।
1: देखो, एक तो खाड़ में पानी जा सीधा,
0: हाँ जी
1: दुनिया तो काफ़ी सारा पानी तो ज़मीन चूस जाएगी,
0: बिल्कुल जी
1: ठीक है, और वो टेल तक भी नहीं पहुंचता, ये समस्या रहती है हमारी। तो ये जो टपका सिंचाई विधि जो आप बता रहे हो, ये बागों में तो बहुत कामयाब है,
0: हाँ जी, बागों बागों के
1: आपके
0: लिए तो
1: आजकल तो
0: वरदान है ये।
1: मरदान है,
0: हाँ
1: सब्जियों में
0: जी
1: भी इस्तेमाल
0: हाँ
1: करते हैं
0: जी
1: इसका।
0: बिल्कुल
1: फिर आपकी तरफ तो फुहारा सिंचाई यंत्र भी है
0: हाँ
1: काफ़ी
0: जी
1: चीज,
0: हाँ जी
1: क्योंकि ऊंचे नीचे टीले हैं
0: हाँ,
1: वहाँ पर, यही कामयाब
0: यही
1: है।
0: कामयाब है। और फुहारा सिंचाई प्रणाली को अब लोग धीरे धीरे हम लोग कम करवा के इसको ये जो टपका सिंचाई प्रणाली की तरफ हम लोग किसानों को ले जा रहे हैं,
1: अच्छा
0: क्योंकि जितना पानी बरसात का या टपका, ये जो आपका ज़मीन का पानी है सिंचाई के लिए जो पानी हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो उसकी मात्रा कम से कम और ज़्यादा ज़्यादा फसल पे लागू हो,
1: लागू हो,
0: ऐसी
1: हाँ
0: प्रणाली हम लोग लेके आ रहे हैं। देखो बरसात पानी के साथ साथ में हम लोग जो कृषि विज्ञान के अंदर की जो तकनीक है जो नई नई आ रही है,
1: हाँ
0: वो फसलें जो बीज नए तैयार कर रहे हैं, उसमें कम पानी की जरूरत के हिसाब से ये लोग इस एरिया के अंदर, जैसे आपका महेंद्रगढ़ भिवानी है, लोहारू है, बाड़ा है, इसमें ऐसी ऐसी किस्में हम लोग लोगों को इस जो किसानों को इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं, जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा खपत ना हो, कम पानी में वो अच्छे आपको फसल दें।
1: फसल दें, तो इसके लिए कोई जागरूकता कैंप, लोगों के बीच में जाना, उनसे बात करना,
0: हाँ
1: उनको
0: जी
1: बताना।
0: ये जो है ना, हम समय समय के ऊपर जो पंचायत लेवल के ऊपर गांव में लोगों को इकट्ठा करके, और कृषि विभाग से भी हमारा संपर्क है, और हमारी खुद की विभाग की भी टीमें लगी हुई हैं, और उनको पूरा जानकारी, अभी भिवानी में एक बहुत बड़ा पशु मेला भी लगा था,
1: हाँ बिल्कुल लगा था जी,
0: उसमें जो है ना कृषि विभाग के अधिकारी भी थे, पशु पालन विभाग के अधिकारी थे, और हमारे अधिकारी भी थे, जो हमने उस दिन 3 3 दिवसीय मेले के अंदर हमने लोगों को बड़ी अच्छी मशीनरी से भी अवगत कराया,
1: अच्छा
0: और पानी किस प्रकार बचा सकते हैं हमने उन लोगों को बताया, और उनको ये समझाने में हम लोग बिल्कुल कामयाब रहे कि आप जो फसल की जो पुरानी पत्तियां जो आप अपनाए हुए हैं उसको धीरे धीरे आप छोड़िएगा, और ये नई पत्तियां आई हैं। आप हिसार में भी जो है ना एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, अभी
1: हाँ
0: 3 दिन
1: यूनिवर्सिटी
0: का
1: में ही
0: कृषि मेला
1: बिल्कुल
0: जो लगा है,
1: कृषि
0: उसमें
1: मेला,
0: भी हमारे अधिकारी गए हुए हैं, तो उसमें जो है ना कृषकों को बड़ा अच्छा, हम लोग एक ही स्थान के ऊपर, जैसे ये बड़े जो जिले लेवल का जो है या राज्य स्तरीय मेले होते
1: राज्य
0: हैं
1: स्तरीय मेले जो
0: इसके,
1: होते
0: हाँ,
1: हैं,
0: और ऐसे ही मेले हम गांव स्तर पे भी करते हैं, कि एक गांव में मान लो 100 200 300 आदमियों को इकट्ठा करके उनको पूरा जानकारी देना, और फिर 2 या 3 दिन के बाद में जो उन्होंने जो हमारी एक टीम तैयार होती है वो फिर उनको जाके बताती है कि भाई ये चीज़ करें, उससे बड़ा बेनिफिट हुआ कृषि में, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ
1: कृषि में ही देखो, खेती बाड़ी में अगर हम पानी की बचत कर लेते हैं, वही पानी हमारे आम जनमानस के
0: है,
1: लिए काम आएगा,
0: काम आएगा बिल्कुल।
1: है ना। और इसके लिए कहीं कोई प्रतियोगिता या कोई आपस में कोई बच्चों के मार्फत कोई जानकारी दिलवाना, या गांव के मौजूद और खास तौर पर महिला वर्ग
0: हाँ
1: को
0: जी,
1: जोड़ना था।
0: महिला वर्ग के साथ साथ में युवा वर्ग भी हमारा बड़ा इसमें सहयोग कर रहा है, क्योंकि खेती जो है ना, जब युवा वर्ग काफ़ी खेती करने लगे हैं युवा वर्ग,
1: बिल्कुल करते हैं
0: क्योंकि वो
1: वो,
0: नौकरी का मोह छोड़ के जब आप खेती की तरफ जा रहे हैं, तो वो पढ़े लिखे बच्चे हैं, और वो जो इन्होंने पढ़ा है तो उसका इस्तेमाल, वो अपना ज्ञान जो है आपकी जो है ना कृषि की नई तकनीक अपनाने में
1: और ये बहुत अच्छी
0: जल्दी
1: बात
0: होता
1: है
0: है, बहुत अच्छी है। अब जब भी कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है तो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं,
1: जी।
0: और जो मैंने आपको बताया वर्षा जल संचय प्रणाली, आप देखिएगा पहले बहुत कम गांव के अंदर घर होते थे जिसमें वर्षा जल संचय प्रणाली कम था,
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ
0: अब
1: जी,
0: तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग या रेन वाटर कैच प्रोग्राम के तहत जब उन युवाओं को हमने प्रशिक्षण किया, तो अब काफ़ी घरों के अंदर, आप हर गांव में जाएंगे तो 10 20 30 50 घरों के अंदर आप ये प्रणाली आप देख सकते हैं, कि बरसात का पानी उन्होंने छत में इकट्ठा किया और छत से फिर उनके टैंक में आया।
1: टैंक में आया, और वो लंबे टाइम तक काम देता
0: हाँ जी
1: है लंबे टाइम तक उनके जो रोज़मर्रा के काम है वो वहाँ से हो जाएं।
0: हाँ संपूर्ण भाई, इस दुनिया में सबसे अच्छा पानी शुद्ध पानी है तो बरसात का पानी
1: बरसात
0: है,
1: का है,
0: आपको कोई उसमें ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती है,
1: बिल्कुल सही बात
0: आप
1: है
0: उसमें पी
1: मैडम,
0: सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्षा को आपके फसल में दे सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि फसल के जो पौधे मुरझा जाते हैं या कोई रोग लग जाता है, तो अगर बरसात आ जाती है तो वो वरदान सिद्ध होती है सारा उसमें, तो बरसात
1: हाँ
0: का पानी से एक तो उनको पानी की जो कमी है वो पूरी होती है, दूसरा जो है अगर उनके पत्तियों पे कोई रोग है या कुछ और जमा है, धूल मिट्टी जमी है, तो सारा उसमें साफ भी हो जाता
1: साफ हो जाता है, और कई तरह के केमिकल रसायन जमीन के अंदर जो होते हैं वो पानी के इसके नीचे चले
0: है।
1: जाते हैं,
0: हाँ बिल्कुल

0: के अंदर जरा।
1: वो बागवानी विभाग के साथ भी मिलके हम लोग जो है ये कार्य कर रहे हैं कि उनको अच्छे फसल जो फल होते हैं
0: हाँ जी
1: और फल के बाग के किस प्रकार से आप फायदा उठा सकते हैं और कम पानी में। देखिएगा जो है ना संपूर्ण भाई, हम लोग अब तो किसान समझने भी लग गए हैं, हरियाणा के किसान तो या भिवानी जिले के किसान तो अब इस चीज़ को समझने लग गए हैं कि भाई बाग भी बहुत ज़रूरी है, बाग लगाने उनको
0: हाँ
1: उनका
0: हाँ
1: आर्थिक जो है ना आर्थिक जो है
0: विकास
1: विकास जो
0: उनका
1: है जल्दी होता है, कम समय में होता है और अच्छा मुनाफा वो सब्जियों से फलों से कमा सकते हैं।
0: और एक लंबे टाइम तक होता बाग तो,
1: हाँ ये
0: मतलब बीस
1: लंबा,
0: पच्चीस साल
1: हाँ
0: तक जो
1: जी
0: है आप
1: एक बाग
0: उसमें।
1: एक बार आपका तैयार हो गया 2-3 साल के अंदर तो आपकी 25 साल 30 साल जो है ना बाग आपको कमा के ही देगा हर साल।
0: हर साल देगा तो, और उसमें भी अशोक जी ये देखो ना कि इलाके के हिसाब से हम बागों का चयन करें।
1: हाँ
0: जो
1: जी
0: शुरू में आपने बात कही थी किस्में या वो
1: हाँ
0: फसलें,
1: जी
0: जैसे अपने भिवाड़ी की तरफ की बात करें तो बेर है,
1: हाँ जी
0: आंवला
1: हाँ जी
0: है ना, ये है जो कम पानी के अंदर हो जाते हैं, जिनको पानी की ज़रूरत तो कम से कम है।
1: हाँ भिवानी के साइड एरिया की हम बाग की बात करें तो किन्नू बहुत ज़्यादा हैं सर।
0: हाँ किन्नू, ये
1: किन्नू
0: सिट्रस के
1: के
0: अंदर
1: जो
0: जो है
1: बाग
0: जो,
1: हैं बड़े अच्छा फसल
0: हाँ
1: होती है
0: जी
1: और एक बार आपकी फसल देना स्टार्ट हो गया तो आप 25 साल तक वो आपको हर साल माला माल आपके आर्थिक स्थिति को बड़ी तेज़ी के साथ आपको माला माल करेगा, काफ़ी
0: करेगा
1: अच्छा पैसा आपको उसमें कमा के देगा।
0: जी। और
1: जैसे
0: उसमें भी पानी का इस्तेमाल मतलब वो
1: हाँ
0: बड़ा
1: अब बेर
0: सोच समझ
1: के,
0: के।
1: बेर का बाग है सर, पानी उसमें चाहिए नहीं होता, बहुत कम कम मात्रा में आपको इतने सारे बेर एक एक पेड़ से आपको इतने सारे वो मिल जाते हैं और जब आपका पूरा बाग अगर वो कुबेर का है तो वो इतना ज़्यादा आपको आर्थिक तौर पे मजबूत बनाता है। बाग तो हर किसान अब समझने लग गया है कि जिसके पास 10-20 किले हैं ज़मीन के तो 2-3 किलो में वो ज़रूर बाग का आप लगाना
0: लगा
1: शुरू हो
0: लेते
1: गया
0: हैं।
1: है।
0: और भी बात करते हैं तो कुछ जैसे व्यापारिक स्तर पर करें, एलोवेरा है,
1: हाँ
0: ग्वार
1: जी
0: पट्टा
1: हाँ कवार
0: है ना,
1: पट्टा,
0: वो इतना हो गया कि उसके अंदर पानी की बहुत कम जरूरत है।
1: हाँ देखो संपूर्ण भाई इस प्रकार के जो पौधे हैं औषधि के तौर पे भी काम आते हैं, दवाइयों में
0: औषधि
1: भी
0: है,
1: काम
0: बिल्कुल
1: आते
0: औषधि
1: हैं।
0: है तौर पर ही।
1: और दूसरा अब इतना तेज़ी से इनका इस्तेमाल होना शुरू हो गया है क्योंकि कई कंपनियां आई हैं और वो इतना ज़्यादा उनकी डिमांड है इसकी, तो वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे किसान।
0: जी, चलो बहुत अच्छी बात है। और अब थोड़ा सा कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, इनके साथ आपके संबंध।
1: देखिएगा जी पानी एक ऐसा मुद्दा है और जागरूक अभियान है क्योंकि मकसद सभी का एक होता है, चाहे वो कृषि विभाग केंद्र हो, चाहे
0: जी
1: बागवानी विभाग हो, चाहे वो जन स्वास्थ्य अभियंत्री विभाग हो, सभी का एक ही मकसद है कि कम से कम पानी की बर्बादी हो। तो इसी मकसद को लेके इसी चीज़ को लेके हम लोग जागरूकता कैंप समय समय पे कई बार हम मिलके भी कर लेते हैं, सभी
0: आपस में मिल
1: आपस में
0: करके
1: मिलके
0: दे,
1: ले लेते
0: बहुत
1: हैं
0: अच्छी
1: क्योंकि
0: बात है।
1: उसमें जो है एक ही स्थान के ऊपर तीनों चीज़ एक किसान को ग्रामीणों को चीज़ मिल जाती है, जैसे पानी संबंधी जो उनकी समस्या है वो हम लोग उसको सोल्व करवाते हैं, अगर उनको कम पानी की फसलों के बारे में जानकारी चाहिए तो कृषि विभाग वाले अधिकारी हमारे साथ में होते हैं। अब कई बार मेले लगते हैं, जैसे हमारा समय समय पर जो राज्य स्तरीय मेले लगते हैं या जिला स्तरीय मेले हैं ब्लॉक स्तरीय मेले हैं
0: जी
1: उसमें सभी अधिकारी इकट्ठे होते हैं और सभी अपने अपने अनुभव अपने अपना ज्ञान उनको जब बताते हैं तो एक ही स्थान के ऊपर सभी चीज़ों का मिलने से एक तो उनकी जो जानने की प्रक्रिया है जो उनका ज्ञान है वो एक तेज़ी से बढ़ता है और वो जल्दी सीखते हैं
0: जल्दी सीखते हैं।
1: और इससे बहुत बेनिफिट हुआ है, बहुत फायदा हुआ है और किसानों ने बड़ी तेज़ी से जल संरक्षण को अपनाया भी है।
0: आखिरी सवाल आपसे,
1: हाँ जी सर।
0: क्या एनजीओ, कोई स्वयंसेवी संगठन, कुछ इस तरह के भी जुड़े हुए हैं, लगे हुए इस
1: हाँ
0: मुहिम में?
1: हाँ बिल्कुल, अभी जो है ना सरकार की नीतियों के अनुसार काफ़ी एनजीओ आगे आए हैं और एनजीओ जब एक चीज़ को लेके एक जागरूकता अभियान को लेके और लोगों को जागरूकता करने के लिए जो संस्थाएं आ रही हैं जो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रही हैं उनका सबसे बड़ा बेनिफिट सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि वो जितना भी टाइम गांव में लगा सकती हैं 8 घंटे 10 घंटे जो उनके प्रतिनिधि होते हैं
0: जी
1: वो एक उनको अच्छी तरह से समझाना।
2: तो ये सुनी भैया ने बातचीत, और भाई उस समय का अभाव के कारण बस थोड़ी मोड़ी भाई रह गई थी, इस टाइम में फिर सुनवाओगे। ईब देख ले भाई बुढ़ी का नहीं, कृषि जगत कार्यक्रम का समय यहीं पर है समाप्त। ईब सुनेंगे भाई कार्यक्रम ग्रामीण संसार। आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है और ईब भाई सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण संसार। और भाई इसमें जो अपना टाइम चल रहा है, क्योंकि अपना जो गर्मी का टाइम है और भाई देखें कि अपना जो पानीपात काम ध्यान रखें, और मौसम में काफ़ी फेर बदल होता रहा है तो अपनी सेहत का

0: ध्यान बहुत ज़रूरी है। और भाई आज शुरुआत करेंगे एक बातचीत के द्वारा, क्योंकि अपना जो वर्तमान का टाइम चल रहा है उसमें जो अपने परिवार की क्या स्थिति है इस बारे में तो भाई हम सुनवाओगे ये बातचीत।
1: आज की हमारी बातचीत का विषय रहेगा वर्तमान समय में परिवारों की स्थिति, और इसके लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है श्रीमान बच्चन राम अरोड़ा जी को। आप वरिष्ठ वकील हैं और इतने वर्षों का आपका अनुभव रहा है, परिवार के बारे में, परिवार के जो मामले हैं वो बहुत आपने सुलझाए भी हैं और आपने बहुत समाधान भी उनका निकाला है। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप हमारे साथ हैं, और एक ऐसा विषय जो कि आज के समय में बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है वो बन गया है कि जब हमारे परिवार किस तरह के होते थे और आज आते आते किस स्थान पर पहुंच गए हैं, इन सब बातों के बारे में हम आपसे व्यक्तिगत रूप से आपके अनुभव भी और एक कानूनी पहलू जो होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्टूडियो में,
2: थैंक यू सर।
1: और आपके जो समय होता था जिस समय आप बचपन में रहे हैं तो उस समय परिवार की स्थिति क्या होती थी, किस प्रकार का माहौल होता था?
2: मैं गांव से आया हूँ।
1: जी
2: गांव में रहते थे मेरे परदादा चौधरी भक्तराम जी,
1: जी
2: दादा चौधरी रामदित तमल जी, पिता चौधरी भगवान दास जी।
1: जी
2: हम उनके पास रहे, मेरे तीन चाचा थे,
1: जी
2: ज्वाइंट फैमिली थी, एक जगह रहते थे
1: जी
2: और उस समूह में रह करके बड़ा आनंद से रहते थे। कष्ट में सुख में आदमी पूरी तरह से परिवार के छत्र छाया में रह करके जीवन अच्छा बिताता था। अब जो आज की स्थिति है, आज तो
1: आज की स्थिति से पहले थोड़ा सा बात करेंगे कि उस समय क्योंकि संसाधन थोड़े कम होते थे,
2: जी,
1: लेकिन उस हालत में भी किस प्रकार से
2: लेकिन
1: सुखपूर्वक
2: उस
1: रह
2: वक्त
1: लेते थे।
2: भी साइकिल हवाई जहाज जैसे था,
1: जी
2: पैदल स्कूल में जाते थे,
1: जी
2: 10वीं तक हम 8वीं तक तो पैदल गए और 9वीं 10वीं में साइकिल पर गए।
1: जी
2: मेरे पिताजी गांव के सर

0: लेकिन उस वक्त भी साइकिल हवाई जहाज जैसे था
1: जी,
0: पैदल स्कूल में जाते थे।
1: जी
0: दसवीं तक हम, आठवीं तक तो पैदल गए और नौवीं दसवीं में साइकिल पर गए।
1: जी
0: मेरे पिताजी गांव के सरपंच, जीवन को सुरक्षित नहीं रखा
1: जी। हम ये कह सकते हैं कि उस समय जो माहौल था, बेसिक संसाधन कम थे, लेकिन सभी आजीविका के लिए काम करते थे, सहारे का कोई ना कोई काम बटा होता था, उसकी जिम्मेवारी होती थी।
0: वो संतुष्ट थे उस साधनों से, संतुष्ट थे
1: जी।
0: उनकी छलांग जो थी मुझे थी अपने सीमित साधनों में भी खुश रहना
1: जी,
0: और परिवार में इतना एडजस्टमेंट होती थी, बाजरे की रोटी खाओ या गेहूं की खाओ, गुड़ खाओ या चीनी खाओ, उसका महत्व नहीं था, लेकिन परिवार में एक जगह बैठकर इकट्ठे होकर खाना
1: जी,
0: शेयरिंग केयरिंग करना
1: जी,
0: और परिवार के साधनों का उतना उपयोग करना जितना हमारा हक बनता हो, इसलिए था। और परिवार में जो एक दूसरे की मानने की शक्ति थी वो आज नहीं है
1: जी।
0: परिवार के बड़े की बात को मान करके, उसकी आज्ञा की पालन करके नतमस्तक होकर चलना, ये बहुत बड़ी बात थी।
1: और
0: आज
1: का,
0: वो नहीं है।
1: गांव का भाईचारा किस
0: और गांव का भाईचारा ऐसा बढ़िया था, आज तुम सुनने आप हैरान हो जाएंगे
1: जी।
0: गांव कटेसरा में शादी होगी तो गांव निगाना पिलाना, चार गांव में उनको निमंत्रण आएगा
1: जी।

0: सामाजिक दूरी भी ले आई है।
1: जी
0: इंसान ईमानदारी की यही बात है,
1: जी
0: जितना आर्थिक परिवर्तन हुआ है उतना समाज में दिक्कत आई है, परेशानी आई है,
1: जी
0: दूरी आई है।
1: जी इसमें कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि

0: इसके पीछे आप क्या कुछ कारण मानते हैं? एक तो जैसे संसाधन कम थे तो लोगों ने बाहर जाके काम
1: ना,
0: करना
1: इसमें
0: शुरू कर
1: सबसे
0: दिया।
1: बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई है
0: जी
1: कि लोगों ने नौकरियों में भागना
0: जी

0: कम पढ़े लिखे लोग होते थे लेकिन आपस में जुड़े रहते थे। लेकिन जो जो शिक्षा बढ़ी है, ये शिक्षा हमें नौकरी करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है।
1: हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए था
0: जी
1: उसमें एक पार्ट मिसिंग है।
0: जी
1: अब शिक्षा में क्या है, लड़के को बी काम कराओ, लड़के को MBBS कराओ, लड़के को
0: जी
1: इंजीनियरिंग कराओ,
0: जी
1: फिर इसको किसी कंपनी में भेजो, फिर बताता है मेरा इतना पैकेज है,
0: जी
1: बस इन्हीं पैकेज में लग गए हैं, दूसरा पहलू छोड़ दिया है। उसमें लगने के बाद कोई सामाजिक चेतना नहीं है, समाज की तरफ कोई आपकी अनुबंधता नहीं है, समाज के साथ आपका कोई विशेष लगाव नहीं रहा। अब किसी भी आदमी का समाज के साथ जुड़ाव दिन ब दिन घटता जा रहा है और सिर्फ हम और हमारे बच्चों के साथ होता जा रहा है।
0: जी
1: और दूसरा क्या है कि मैक्सिमम फैसिलिटीज जुटाओ, मैक्सिमम फैसिलिटीज, उससे क्या हो जाएगा,
0: जी
1: आप ये समझ रहे हो मेरे पास 3 कारें हो जाएंगी, उससे आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगा,
0: मानसिक
1: मानसिक
0: शांति
1: संतुलन तो आपका रहेगा लेकिन मानसिक पीस आपको नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी।
0: जी
1: आप वो जीवन नहीं जियोगे जो पहले जीवन लोग आपके बुजुर्ग जी कर चले गए।
0: जी
1: जितना आप आर्थिक अवस्था की तरफ कम ध्यान दोगे और समाज की तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे, नेचर के नज़दीक रहोगे,
0: जी
1: उतना आप प्रफुल्लित हो जाओगे।
0: कहीं इसके पीछे एक कारण ये भी मान सकते हैं कि दिखावा वो बहुत ज्यादा हो गया है।
1: बहुत ज़बरदस्त हो गया है, दिखावा
0: जी
1: इतना हो गया जी कि कंपटीशन दिखावे का हो गया है,
0: जी
1: इसने लड़के की शादी में ये किया
0: इतना
1: है,
0: दिया है।
1: इसने लड़की की शादी में ये किया है,
0: जी
1: इसके आगे इतने बंदे आए थे, हमारे यहाँ कम आए हैं, हम भी इस तरह, फिर उन साधनों के लिए आदमी अनकार्ड मीन्स को अडॉप्ट करता है,
0: जी
1: अनकार्ड मीन्स को अडॉप्ट करता है और इतने लोअर सतर पे आ जाता है कि शब्दों में कहना अच्छा नहीं लगता है।
0: यानी कि वो दिखावे के चक्कर में कहीं से लोन लेगा, कहीं से उधार
1: जी जी हाँ
0: उठाएगा,
1: हाँ
0: और वो फिर लोन है वो चुका नहीं पाता है,

0: और गुड काज पे नहीं है, छोटी छोटी बातों पर है। अगर वो बातें तब सुलझ सकती थी अगर पेरेंट्स के साथ रुक करके, पेरेंट्स के मिडल में रह करके, समाज को देख करके, सारी चीज़ों को देख करके रिश्ते किए जाते।
1: जी,
0: अब मैट्रिमोनियल मैटर्स आप कभी कोर्ट में आए, इतने मुकदमे बाकी के होते हैं, वो दोनों कोर्टें फुल होती हैं, अंदर वकील भी जाए तो

0: कोई बात समझा दी है तो अपनी पत्नी से, अब जो मेरे पास इस वक्त केस चल रहा है सरदार जी का है, ये मॉडल टाउन में बैठे हैं, कल ही हमने दायर किया सिर्फ इस बात के कि तेरे पिता ने हम मेरे को ये शब्द क्यों कहे, सिर्फ इसी वजह से वो आप सेपरेट हो गए, अब तलाक का दावा हो गया।
1: बहुत
0: सो पेशेंस की कमी आ गई है
1: जी।
0: कोई गाइड नहीं रहा, कोई बैठ के लड़की को समझाने वाला नहीं रहा, लड़के को समझाने वाला नहीं रहा, क्यों, समाज से तो कट गए, गुरुद्वारे जाना नहीं, मंदिर जाना नहीं, ऋषि वाल्मीकि जी का पता नहीं करना, तुलसीदास जी को पढ़ना नहीं, कबीर साहब को पढ़ना नहीं
1: जी, जी।
0: अगर आप उनको पढ़ते तो आप स्टेज पर ना थे। अब मैंने कबीर साहब को कुछ पढ़ा, मैंने लिखे हैं बचनदास के दोहे
1: जी,
0: अब मैंने लिखे 626 दोहे
1: जी।
0: अगर मैंने कबीर साहब को पढ़ा, तुलसीदास जी को पढ़ा, वाल्मीकि ऋषि जी को पढ़ा, सब संतों को पढ़ा, गुरु रविदास जी को पढ़ा
1: जी।
0: तब तो मुझे ये ज्ञान मिला। अगर मैं यूँ पढ़ा रहता तो मुझे ये ज्ञान ना होता, ना मैं ये बुक्स लिखता। इसका मायने क्या हुआ, अगर आप जीवन में जो कुछ बनना चाहते उस रास्ते पे चलो, और हम चलेंगे तो आगे बच्चे भी चलेंगे, फिर समाज भी उसको समझता है कि भाई समाज के लिए, उत्थान के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। कोई ना कोई बंदा तो उसमें से आदर्श जीवन बना के दिखाएगा, कोई ना कोई व्यक्ति तो अपने आप को आगे समर्पित करेगा
1: जी।
0: और उस
1: आपकी कितनी कितनी किताबें हैं आप?
0: मेरी 14 किताबें हो गई।
1: 14 किताबें
0: जी जी, जी।
1: किस तरह के विषय हैं
0: बताता हूँ। पहली है 26 छक्के
1: जी,
0: वो 26 छक्के में 26 स्टोरीज हैं,
1: कहानियां हैं,
0: कहानियां। अच्छा। कहानियां ऐसी नहीं है
1: जी
0: जो हर आदमी के साथ घटित हो सकती है, जो सोचेगा ये कहानी तो मेरे पे लिखी है, वो कहेगा मेरे पे लिखी है
1: जी।
0: तो उस कहानियों को, 26 कहानियों को हरियाणा साहित्य अकादमी ने मुझे पुरस्कृत किया
1: जी,
0: बहुत बड़ा प्राइज दिया, फिर ऑल इंडिया का मेरे को पास दिया कि आप कहीं भी आए जाएं। वो किताब इतनी पॉपुलर हो गई कि हर जगह से फोन आते हैं, सर आपकी 26 कहानियां पढ़ी
1: जी,
0: तो बहुत हमारा मन बदला
1: जी।
0: फिर सर मैंने 100 शिशु लिखी
1: जी,
0: फिर लिखा 1000 विजडम,
1: अच्छा,
0: योर विजडम,
1: ऑल
0: विजडम, तीन अंग्रेजी में,
1: अच्छा,
0: बाकी 11 किताबें हिंदी में,
1: अच्छा,
0: तो कुल 14 लिखी
1: जी।
0: हर किताब में सब्जेक्ट मैटर तो सोशल रखा,
1: सामाजिक पहलू,
0: सामाजिक पहलू रखा
1: जी।
0: अब जो मैंने 100 कविताएं लिखी हैं वो आप पढ़ेंगे
1: जी,
0: तो उसमें आपको आगे भाई वाक्य किसी ना किसी समाज में कोई ना कोई पहलू मैंने जरूर पकड़ा है
1: जी,
0: ताकि उससे कई बच्चे कविता को शौक से पढ़ के सीख जाएंगे
1: जी।
0: कई बच्चों में कहानियां पढ़ने का शौक नहीं होता
1: जी,
0: वो कविता को पढ़ेंगे, वो दिल से सुनेंगे
1: जी,
0: शायद उनमें बात अच्छी लग जाए। तो मेरी जो 26 छक्के था उसका विमोचन किया फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
1: जी,
0: और दूसरी का विमोचन किया भारतवर्ष के सबसे बड़े कवि ओम प्रकाश जी ने, रोहतक आए और उन्होंने किया। ऐसे जो बाकी पुस्तकों का विमोचन है ऐसे एक से एक महान लोगों ने किया, लेकिन पहले उन्होंने पढ़ा, उनको लगा भाई ये स्टैंडर्ड की बुक है, मेहनत करके लिखी गई है, सिर्फ समाज को दृष्टिकोण में रख के लिखी है, किसी और भावना से नहीं लिखी
1: जी।
0: सिर्फ इसी हर पुस्तक में ये मन में था कि हमारे समाज में बहुत जो बुराई है, मेरे में भी जो बुराई है, वो बुराइयाँ कैसे दूर हो, आदमी कैसा ढंग से अपने आप जीवन को सुधारे, और ये जो छोटी छोटी हरकतें हैं
1: जी,
0: जो छोटी छोटी सोच है
1: जी,
0: ये सोच कैसे खत्म हो।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जिस प्रकार से आपने बताया है कि छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े मुद्दे ना बनाए, परिवार में हर एक व्यक्ति की एक एक एक स्थान है, एक इज्जत है, अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ रहेंगे, उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, उनके अनुभव से हम कुछ ना कुछ सीख लेंगे, तो ये परिवार का जो विघटन है ये कुछ कम हो सकता है, इस पर हम रोक लगा सकते हैं।
0: जी, जी।
1: आप स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी आपने जानकारी दी, अपने विचार, अपने सुझाव और अपने अनुभव आपने हमारे साथ साझा की, इसके लिए श्री बच्चन राम अरोड़ा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं भी आपका धन्यवाद दूँ इसलिए कि आपने मुझे मौका दिया, मैं अपने विचारों को आगे तक पहुंचा सका आपके रेडियो के माध्यम से।
1: धन्यवाद,
0: क्योंकि मैं अकेला तो सब जगह नहीं पहुंच सकता
1: जी,
0: पर आपका ये रेडियो मेरे इस विचारों को आगे पहुंचाएगा, इसलिए मैं डॉक्टर साहब का
1: बिल्कुल
0: दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद दूँ।
1: शुक्रिया।
2: ये तो सुनी बहन पूर्व प्रसारित बातचीत भाई, अपना जो वर्तमान समय में परिवार की क्या स्थिति है इस बारे में, और ये भी काफ़ी समय हो रहा तो भैया नाज सुनवाऊंगे शब्द जो कि गाया हुआ है दयानंद और साथियों का।

तो यो सुनया भाइया ने शब्द और अपना टाइम देख ले ही भाई ब्यो घड़ी का नहीं। इसी के साथ ग्रामीण संसार कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त हो रहा है। चल लेंगे सारे भण भैया ने। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण संसार। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म गदर 2 से ये गीत। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने, लिखा है सईद कादरी ने और संगीत दिया है मिथुन ने।

गदर 2 फिल्म से सुना भी आपने ये खूबसूरत सा गीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में फिल्म सागर से। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है RT बर्मन ने।

कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाएंगे फिल्म खट्टा मीठा से। आवाजें हैं दिलेर मेहंदी और कल्पना की। नितिन रायकवार के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म एनिमल से, अरिजीत सिंह की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है सिद्धार्थ गरिमा ने और संगीत दिया है श्रेयास पौराणिक ने।

दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म से सुना भी आपने ये गीत अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में। शब्द रचना है सुधाकर शर्मा की और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत चित्रा की आवाज़ में फिल्म बॉम्ब।

श्रोताओं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म हाईवे से। इस गीत को गाया है नूरा सिस्टर ने। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है AR रहमान ने।

कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म जलवा से। सुधाकर शर्मा के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने।

चैनल से सुना आपने कार्यक्रम का ये आखिरी गीत कुमार शानू की आवाज़ में, शब्द रचना थी इंडीवर की और संगीत से सजाया एमएम करीम में। इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत को यहीं समेटते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत में पहली गज़ल आपको सुनवाते हैं अमृतपाल सिंह की आवाज़ में।

इसी गज़ल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत को यहीं समेटते हैं, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार और ठीक 9 बजे अंग्रेजी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित

0: उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
2: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमड़ी के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर

0: नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
2: एन इंडियन डो
3: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
2: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
4: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
5: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
4: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए क्षित कुमार वैद्यान।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।

0: टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय की तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Revision Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is underway in New Delhi. Earlier in his opening remarks at the BRICS foreign ministers' meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
3: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can

ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक फिल्म से। कार्यक्रम एक फिल्म से में आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म जाने तू या जाने ना से कुछ चुनिंदा गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में पहला गीत राशिद अली की आवाज़ में। शब्द रचना है अब्बास टायर वाला की और संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

कार्यक्रम एक फिल्म से में आज हम आपको सुनवा रहे हैं जाने तू या जाने ना फिल्म से गीत। आइए सुनते हैं अगला गीत, वसुंधरा दास और राशिद अली की आवाज़ों में। गीत को लिखा है अब्बास शायरवाला ने और संगीत दिया है AR रहमान ने।

कार्यक्रम एक फिल्म से में आखिरी गीत सुनेंगे, फिल्म जाने तू या जाने ना से। इस गीत को गाया है बैनी दयाल, अनुपमा, ब्लाजे, तन्वी, दर्शना और सतीश ने।

0: कार्यक्रम एक फिल्म से यहीं समाप्त होता है, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, 9:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे कंट्री वाइड और ठीक 9:45 पर इनसाइटर्स आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: जब व्यापार के प्रचार की होगा
2: कंट्री वाइड।

0: नमस्कार, कार्यक्रम कंट्रीवाइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मौसम विभाग ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की है। इस पर हमारे साथ है डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर शेष कुमार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे इसी विषय पर कि मौसम विभाग ने पहली बार ये प्रणाली शुरू की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली। तो पारंपरिक मौसम पूर्वानुमान की जो प्रणालियां हुआ करती थी, उनकी तुलना में ये नई प्रणाली हमारे लिए कितनी बड़ी पहल है?
1: मैं पहले थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, भारत जो मौसम विभाग है, पहले भी ऑनसेट ऑफ मानसून केरला के ऊपर देता था। उससे पहले जो लंबी अवधि की जो मानसून जो फोरकास्ट देता है, जैसे अप्रैल सेकेंड वीक में देता, अभी इसी साल दिया है अप्रैल 13 तारीख, उसमें बताया गया कि इस बार जो बारिश है पूरे देश में जो सामान्य से नीचे होगा, और फिर इसी का अपडेटेड हम देते हैं मई लास्ट वीक में, तो उसमें बताया जाता है कि इसका अपडेटेड वर्जन देता है कि अभी देश में कितना बारिश होगा, इसी का अपडेटेड। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देते हैं कि ऑनसेट ऑफ मानसून कौन से दिन होने वाले केरला में, ये हर साल हम देते थे। इस साल हमने क्या किया है, और एक AI बेस्ड एक मॉडल लाया है, जो ब्लेंडेड अप्रोच हम इसको कहते हैं। इसमें जो IMD का डेटा लेके फिर इसको दो मॉडल जो प्रोसेस है उसको ब्लेंड करके, उसको IFS कहते हैं, IITM का ERF कहते हैं, तो इसके साथ स्टैटिस्टिकल मॉडल लेके इसको ब्लेंड किया गया है, और उसका जो मीन एब्सोल्यूट एरर हम कहते हैं प्लस और माइनस 4 दिन है। उसमें मोस्ट जो वाइडली यूज दो क्राइटेरिया हमने यूज किया है, जो फर्स्ट डे ऑफ 5 डे वेट स्पेल, और सेकेंड ये है कि 5 डे वेट स्पेल है उसके बाद सब्सिक्वेंटली ड्राइड स्पेल नहीं होना चाहिए 10 डेज, ये पूरे 30 दिन में इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए है, और AI बेस्ड ये मॉडल हमने डेवलप किया है। अभी फिलहाल हमने इसको देंगे 3196 जो ब्लॉक्स है इंडिया में, ये करता है कि 15 स्टेट और 1 UT में, और उसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो ब्लॉक थे भी हम डेवलप करेंगे इसको। रिसेंटली इस प्रोडक्ट को मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितेंद्र सिंह जी और हमारे सेक्रेटरी DG मिलके इसको लॉन्च किया गया प्रोडक्ट। ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है, और इसके साथ भी अलग सेक्टर्स भी है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इसके लिए महत्वपूर्ण कहता है, इसलिए है कि जो किसानों को लैंड प्रिपरेशन हो, सीड परचेज करना हो, और इसका जो स्ट्रेटेजिकली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लेना हो, लॉन्ग ड्यूरेशन का क्रॉप्स लेना हो, ये प्रॉपरली वो प्लान कर सकते। इस फोरकास्ट को हम प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट हम कहते हैं, इसको 4 हफ्ते पहले हम देते ताकि उनको काफी टाइम मिले प्रिपरेशन करें। पहले हम प्रोग्रेस देते थे हर दिन, बट ये ब्लॉक स्पेसिफिक होगा, हर ब्लॉक में आपका ब्लॉक में ऑनसेट कब होगी बारिश, इसके हिसाब से जितने भी ब्लॉक में किसान है वो अपना प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं।
0: वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये जो पूर्वानुमान प्रणाली तैयार की जा रही है, इनमें स्वदेशी तकनीक की किस तरह की भूमिका है, खासतौर जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं या और भी इस तरह के जो उपकरण होते हैं, तो ये कितने हमारे लिए फायदेमंद है या कितने विश्वसनीय होते हैं हमारे लिए?
1: इसमें जो बेसिक डेटा यूज किया है कि IMD का डेटा है, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डेटा है, ऑलरेडी हमारा सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे आपका ARG ऑटोमेटिक रेन गॉज है, और उसके AWS ऑटोमेटिक रेन गॉज है, उसमें रडार भी है, उसमें सैटेलाइट डेटा भी है, इसको हम पहले तैयार किए हैं। उसके बाद 3 जो प्रोसेसेस है, जैसे मैंने बताया AIFS है, देन IITF का जो ERP है, देन स्टैटिस्टिकल मॉडल है, इसको ब्लेंड किया हमने। उसके बाद AI जो मॉडल्स है इसको यूज करके फिर हम प्रोबेबिलिटी निकाले हैं इस ब्लॉक में कब ये ऑनसेट होगी। इसमें पूरा इंडिया का भी रोल है, जो बेसिक डेटा जा रहा है और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो इंडिया का डेटा है, और जो मॉडल्स बनाए IITM है, जो MOES का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये पूरा प्रोसेस को प्रणाली को तैयार किया है, और इसका डिसिमिनेशन भी किसानों तक पहुंचेगी, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है इसको किसानों तक पहुंचाने के काम करेंगे।
0: डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि 15 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 3196 से अधिक उप जिलों तक इस तरह की प्रणालियों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोई संदेह नहीं कि इसे करने में काफी सारी मेहनत भी लगी होगी, कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे।
1: एक्चुअली जो पूरे इंडिया के डेटा है, हम इनिशियली इस रीजन को इसलिए कन्फाइन किया, हमारे पास एक बहुत डेंस डेटा है, सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन डेटा हो जो वैलिडेशन के लिए हमें चाहिए, और बाकी रीजन के लिए भी हम करेंगे। अभी इस बार जो किया है इसको हम टेस्ट करेंगे, और नेक्स्ट ये है कि इसका डिसेमिनेशन पार्ट है, हम ऑलरेडी इसका डेटा आ गया है, इसको किसानों तक कैसे पहुंचाना वो एक काम है, हम अलग अलग मिनिस्ट्रियों के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और IMD अपना एक टीम है जो किसानों तक कनेक्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज से भी हम कनेक्ट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से भी हम कनेक्ट करेंगे, जिसका देशों में नेटवर्क है, जैसे कृषि सखी, पशु सखी का नेटवर्क है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज का नेटवर्क है, जिसका हमने उसी के साथ मिलकर एक पोर्टल बनाया पंचायत मौसम सेवा, उसके थ्रू भी हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हमारा एम है कि सब

0: किसानों को पहुंचना चाहिए ताकि उनको काफी टाइम मिले प्लानिंग करने के लिए।
1: यानी ये कह सकते हैं कि किसानों को ध्यान में रख करके फार्मर ओरिएंटेड चीजों को डेवलप करने पर काम हो रहा है, किसानों की अधिक से अधिक मदद की जा सके ताकि वो अपनी फसल को बेहतर कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें।
0: ऑलरेडी IMD और बहुत स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे ICAR सेंटर्स हैं और बहुत IITs के साथ मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम देते हैं जहाँ पे IMD वेदर फोरकास्ट देते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए, और उसके साथ साथ एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे एक कॉम्प्रेंसिव एडवाइजरी बनाते हैं हर क्रॉप के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, पॉलिटिक के लिए, फिशरी के भी, कि अगले 7 दिनों में आपका क्या मौसम रहेगा उसके हिसाब से आपका क्रॉप को क्या इम्पैक्ट होगी उसका आपको एडवाइजरी, क्या आपको एक्शन लेनी है। उसके साथ साथ इनके ऑनसेट भी हम देंगे जो उनका प्रोबेबिलिटी की जो ऑनसेट डेट है नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए, उनको काफ़ी मदद मिलेगा और ये प्रॉपर प्लान भी करेगा और इनके क्रॉप में तो नुकसान भी कम होगा इसका।
1: डॉक्टर शेष, अभी जो हमारी बात हुई इसमें हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर पर 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन पर वर्षा पूर्वानुमान की पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, तो इसे पूरे देश में लागू करने की भी योजना है।
0: अभी हम दूसरा प्रोडक्ट है जो माननीय मंत्री जी है जितेंद्र सिंह जी कल लॉन्च किया है, ये 1 किलोमीटर स्पेशल रेजोल्यूशन का रेनफॉल प्रोडक्ट है, अभी हमने उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए बनाए गए हैं। इसलिए है कि वहाँ पे एक विंस प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, उन्होंने काफी ERG है AWS इंस्टॉल किया है, काफी इन्फॉर्मेशन अभी ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है। उसके साथ साथ हमने रेडार डेटा भी यूज किया है, AWS डेटा भी यूज किया है, यूज करके एक मॉडल ऑलरेडी हमारा ग्लोबल मॉडल है जो फोरकास्ट देता है 12.5 किलोमीटर, और एक रीजनल मॉडल है जो INCMRWF का है उसके पास 3 से लेकर 4 किलोमीटर का जो स्पेशल रेजोल्यूशन पे हर घंटे में अपडेट होता है। इसी को AI जो मॉडल्स है उसको यूज करके हम लोग डाउन स्केलिंग किया, 12 किलोमीटर को 4 किलोमीटर के, 4 किलोमीटर को फिर 1 किलोमीटर किया, ये हर घंटे में अपडेट होता है नेक्स्ट 10 डेज के लिए। एक बार रन किया तो 240 आवर्स के लिए जो रन होता है जो नेक्स्ट 10 डेज के लिए। ये एग्रीकल्चर के अलावा भी बाकी सेक्टरों के लिए जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जैसे एविएशन सेक्टर के लिए ये मदद होगा। और ये जो प्रोग्राम है अब इनिशियली हम इसको पायलट सर्विस हम कह रहे हैं, बाकी देशों में भी हमने इसको शुरू किया काम करने के लिए, एक बार हो सकता है कि ग्रेजुअली हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हर एक साल के लिए, और ये हम साथ साथ इसका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, वैलिडेशन भी कर रहे हैं, जो वहाँ पे AWS डेटा है, ERG डेटा है, जो इंस्ट्रूमेंट से जो डेटा आता है उसके साथ साथ कंपेयर करके इसका एरर भी बताते हैं कि एक्यूरेट कितना है प्रोडक्ट, उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसको API के थ्रू भेज भी रहा है। जो ये दोनों प्रोडक्ट है जो कल लॉन्च किया है ये हम लोग API के थ्रू सभी एजेंसीज को जो रेनफॉल या वेदर इन्फॉर्मेशन चाहिए इसको ऑलरेडी शेयर करना हमने शुरू कर दिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो किसानों के लिए काम करता है और उसका साथ साथ भी MNC है जो ईल्ड फोरकास्ट करता है, उनके लिए उनका मॉडल के लिए बहुत जरूरी है जो रेनफॉल डेटा वेदर डेटा है वो हर फार्म लेवल का भी क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन करना चाहते हैं, उसके लिए हाई रेजोल्यूशन बहुत ही जरूरी है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है।
1: डॉक्टर शेष, अभी अपने ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र किया तो ट्रांसपोर्टेशन की बात आती तो भारत जैसा देश जहां पर कृषि भी बड़े पैमाने पर होती है और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है, एविएशन की हम बात करें या फिर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो यहां पर भी इस तरह के फोरकास्ट की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे UP में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, कुछ स्पेसिफिक इनके लिए भी किया जा रहा है?
0: जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो हम रेनफॉल के दे रहे हैं, इसके अलावा भी ऑलरेडी IMD सभी सेक्टर्स के लिए सर्विसेज दे रहा है, जैसे इंक्लूडिंग हेल्थ सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एविएशन हो गया, ऐसे कोई सेक्टर है जो IMD वेदर फोरकास्ट नहीं देता। हम देखे तो जो नौकास्ट हम कहते हैं अगले 3 घंटे में फोरकास्ट देते हैं हम लोग, और मीडियम रेंज शॉर्ट रेंज कहते हैं नेक्स्ट 3 दिन में वेदर फोरकास्ट देते हैं, और नेक्स्ट मीडियम रेंज नेक्स्ट 7 दिन के लिए, और उसके बाद एक ERFS होते हैं एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट जो अगला 15 दिन में, उसके बाद हर महीने का भी देते हैं और 4 महीने का भी देते हैं, उसको हम कहते हैं सीमलेस वेदर फोरकास्ट सिस्टम फॉर इंडिया। तो इसमें हर तरीके से फोरकास्ट है, इसको हर सेक्टर्स को हम देते हैं, वो ऑलरेडी हम API के थ्रू दे रहे हैं, उनका सेक्टर्स के साथ इंटीग्रेट भी किया, इनकेस उनका पोर्टल्स भी है, उस पोर्टल के साथ भी हम इंटीग्रेट किया, उसके लिए अलग अलग डेडिकेटेड हम पोर्टल्स भी

अगला 15 दिन में, उसके बाद हर महीने का भी देते हैं और 4 महीने का भी देते हैं। उसको हम कहते हैं सीमलेस वेदर फोरकास्ट सिस्टम फॉर इंडिया। तो इसमें हर तरीके से फोरकास्ट है, इसको हर सेक्टर्स को हम देते हैं। वो ऑलरेडी हम एपीआई के थ्रू दे रहे हैं, उनका सेक्टर्स के साथ इंटीग्रेट भी किया, इनकेस उनका पोर्टल्स भी है, उस पोर्टल के साथ भी हम इंटीग्रेट किया। उसके लिए

0: जाता है। और इसी मौसम का आधारित एडवाइजरी भी देता है कि आपका अगले 7 दिन में कैसे मौसम रहेगा, और इन केस इस तरह मौसम है तो क्या नुकसान होगी, और उस नुकसान को बचाव करने के लिए आपको क्या क्या करनी पड़ेगी, एक्शन लेनी पड़ेगी। ये हमारा एक नेटवर्क है, उसको हम कहते हैं कि 130 नेटवर्क बनाया है। 130 जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नेटवर्क बनाया है, हमारा जो मौसम विभाग से फोरकास्ट उनको जाता है, वहाँ के जो साइंटिस्ट बैठे हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो एंटोमोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट है, वो क्रॉप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव बुलेटिन बनाता है। उस बुलेटिन को वेदर इन्फॉर्मेशन के साथ हम डिसमिनेट करते हैं, और डिसमिनेट करने के लिए भी बहुत सारे कोलेबोरेशन हमने किए हैं, जैसे पंचायत मौसम सेवा, वहाँ पे हर पंचायत मेंबर को व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली जाता है, और वो पंचायत जो सरपंच है, वार्ड मेंबर है या सेक्रेटरी है, फर्दर वो उनका गांव के जो लोग हैं, जो किसान, उनको फर्दर डिसमिनेट करते हैं। और रिसेंटली फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेशन किए, उनके साथ एक अच्छा नेटवर्क है जो पशुशक्की है, कृषिशक्की है, जो उनका नेटवर्क हम फोरकास्ट उनको देते हैं, वो फर्दर वहाँ पर कृषिशक्की फसलशक्की फिर उसका गाँव में जो डिसमिनेट करते हैं। लगभग अभी आप देखेंगे तो हर बार 4 करोड़ के आसपास किसानों को इस वेदर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम एक इम्पैक्ट असेसमेंट भी किया था, कितना इससे आपको लाभ मिल रहा है, फीडबैक भी हम कलेक्ट करते हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट इन केस कोई भी किसान है जो रेनफेड रीजन में है, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक वेदर इन्फॉर्मेशन या इस एडवाइजर को यूज करेंगे तो उनको लगभग 12,500 का एडिशनल इनकम मिल जाती है। तो इसी को पूरे इंडिया में जहाँ पे रेनफेड एग्रीकल्चर है, जिसका खेती है बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो लेस देन 2 हेक्टेयर है, वो इन केस इम्प्लीमेंट करे लगभग देश में 13,500 करोड़ जो बचा सकते या एडिशनल इनकम हम कर सकते हैं इस एडवाइजर के या वेदर इन्फॉर्मेशन के थ्रू।
1: डॉक्टर शेज, बहुत ही ग्राउंड लेवल का सवाल है ये, एक आम किसान अगर इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है तो उसे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसे किस तरह के प्रयास करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए कि उस तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचे।
0: जैसे मैंने बोला, कोलैबोरेशन के साथ बहुत सारे हमने स्टेट एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन की है। हम लोग फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स है जो हर जिले में जाके फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जाते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहिए, और हर न्यूज पेपर में भी देते हैं और रेडियो में भी पार्टिसिपेट करते हैं कि मौसम का जानकारी के लिए और एडवाइजरी भी क्या करना चाहिए उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। किसानों को उसमें जोड़ के रहना पड़ेगा कि आज का वेदर फोरकास्ट क्या है, और फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और हमारे एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्स भी हैं जो रीजनल लैंग्वेज में देते हैं, जिनके कोई पंजाबी है तो पंजाबी लैंग्वेज में हम वेदर फोरकास्ट देते हैं, और एडवाइजरी भी उसी लैंग्वेज में होता है। वो एक मेघदूत ऐप है और एक मौसम ऐप है, और इसके अलावा भी एक दामिनी ऐप है जिसमें लाइटनिंग इन्फॉर्मेशन आता है। तो इसके अलावा भी किसान बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, जैसे हैवी रेनफॉल है, वहाँ पे थंडर स्टॉर्म है, लाइटनिंग है, वहाँ पे भी जाते हैं, उसमें भी नुकसान होने का बहुत चांसेस रहता है। उस केस में जो दामिनी का इन्फॉर्मेशन मौसम ऐप में भी इन्फॉर्मेशन, उसको देखने चाहिए, वो रीजनल लैंग्वेज में है, और अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा भी हर स्टेट में मौसम विभाग का एक ऑफिस है, तो उस ऑफिस के साथ भी कनेक्टेड रहना चाहिए, उस ऑफिस वाले भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इसके वजह से हर किसान को लाभ मिल सकता है, वेदर इन्फॉर्मेशन मिल सकता है।
1: डॉक्टर शेष, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, जलवायु परिवर्तन के कारण अभी मौसम की अनिश्चितता काफी बढ़ रही, जैसा कि हम अभी हाल में ही देख रहे हैं, तो ऐसे में जो चुनौतियां मौसम विभाग के सामने आ रही हैं, उनको टैकल करने के लिए या उनसे आगे बढ़ने के लिए, या फिर इस तरह की चुनौतियों के बाद भी मौसम का फोरकास्ट करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है?
0: इसी के हिसाब से रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी एक स्कीम लॉन्च किया था, हम मिशन मौसम कहते हैं। इस मिशन मौसम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक आपने रडार देख लीजिए और आपका AWS देख लीजिए, एक एग्रीकल्चर स्पेसिफिक एग्रो AWS कह रहे हैं, उसका नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं, और सैटेलाइट के भी इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। इसके हिसाब से इसका जो इनपुट्स जाते हैं मॉडल्स में, उसको भी मॉडल्स को भी हम रोबोस्ट बना रहे हैं, ताकि विद एक्यूरेसी एक वेदर इन्फॉर्मेशन को वो फोरकास्ट करे, प्रिडिक्ट करे, फर्दर इसको हम जानकारी जो रिलेटेड सेक्टर को हम प्रोवाइड करें।
1: डॉक्टर शेष, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कंट्री वाइड, जिसमें हमने बात की पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली पर, जिसमें हमने चर्चा की डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी से, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Countrywide.

दाखला पत्र हमें मिला है रघुनाथपुरा से। भेजा है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी ने। राजम छत्तीसगढ़ से ये हैं अनिल, अंजुलता, आदित्य, कृष श्रीवास्तव। अमरपुरा से आप हैं दीपक, रोशन, वंशीलाल, रेखा श्रीवास्तव, श्वेता देवी, सुरुचि, दिशा, लंबी श्रीवास्तव। नया पारा भिरई से आप हैं बसंत सूर्यवंशी, सरोज, चंद्रकांत, प्राची, टीयूषी सूर्यवंशी। मलोट पंजाब से ये खत है छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत, गगनदीप कौर और रौनकदीप कौर ने भेजा है। वड़ाली देशमुख से ये हैं राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर, इंदिराबाई और सुयना गोबरखेड़े। आइए इन सब की फरमाइश पर अनूप खुशाल की आवाज़ में फिल्म मासूम का ये गीत सुनते हैं। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं मनचाहे गीत। कार्यक्रम में अगला कथक जो हम शामिल करने जा रहे हैं वे आया है केलंगा से। भेजने वाले हैं सुंदरवाल कौशिक, अभी, नीशु, देवू, पीहू, पाखी कौशिक। पुणे से पंकज, आर्य, आदि और शैलेश, सोनम, धनुषपुरी, बीटी वाड़ोदे। शेरगढ़ मलोट से बलराम कालवा, भोलाराम, लक्ष्मी देवी, कुदरत, मनप्रीत, मेवा सिंह, हरप्रीत, शिवराज मान। पिरता कोरासी से रोहित साहू, हरीश कुमार, पुष्पलता, राधा साहू। बगावत यूपी से एहसान अली, दिल्ली से डॉक्टर सोनम अदीबा, बक्सर बिहार से फातिमा खातून, राज अंसारी, आसमा खातून। डुमराव से आप हैं वाली अल्लाह अंसारी और आसमा। साउथ एक्सटेंशन से ये हैं गुरमीत सिंह मीता। बेरड़ी से खत भेजा है राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज ने। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म डॉन से ये गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। शब्द रचना है अनजान की और संगीत पद किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोता हूँ, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं मनचाहे गीत। मनचाहे गीत में अगला पत्र हमें मिला है गांधी बाग अकोला से। भेजने वाले हैं रमेश कटनकर वैशाली, अमरावती से कमरुल्ला नसीम बेगम, आयशा खान, हृदया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, मुश्तबा खान, राउफ भाई और शाहिद। अमरावती हिसार से राजेंद्र सैनी, राहुल सैनी, बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, मेरठ छावनी से ये हैं दिव्य दर्शन, कविता, इंदौर एमपी से खत भेजा है वंदना मराठा भाऊ, गणेश कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता और नारायण ने। पतरोड़ा अनूपगढ़ से खत भेजा है मंगल जनागल, रोशनी अंकुर इंदु सुशील ने। ये पत्र है फतेहाबाद से। भेजने वाले हैं बिट्टू मोहरवाला, गगन अमरपुरी, युवराज और भूविक। चरखी दादरी से खत भेजा है जगनेश सांगवान ने। करनाल से आप हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन, प्रतिभा शर्मा, ईशप्रीत शर्मा, सोनिया कालका, विपाशा शर्मा, नरेंद्र तनेजा, मीनाक्षी, किरण ठाकुर, जग्गी दुआ और प्रेम लता ने। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म दूसरा आदमी से ये गीत। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया राजेश रोशन ने।

कार्यक्रम में अगला खत हमें मिला है तोरनाला वाशिम से, भेजा है सुखदेव राउत ने। बागवत यूपी से ये हैं एहसान अली, सच्चा खेड़ा से वेद बिहारी। बटोर से ये पत्र भेजा है रामदिया, नीलम, अजय, विजय, तमन्ना, पायल, रामफल और धर्मवीर ने। कोड़ा गांव छत्तीसगढ़ से आप हैं सुभाष चकधारी, कविता, मुस्कान और अनुष्का। शालर पहलगाम कश्मीर से पीरजादा, मेहर, जुद्दीन, केसरदीन और नजमदीन। भिलाई छत्तीसगढ़ से अशोक, दीपक, प्रमिला, ज्योति। चरडोगरी पिपरिया एमपी से दुर्गाराम साहू। इन सबकी पसंद पर सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ पर फिल्म जमीर का ये गीत। साहिर लुधियानवी के बोल हैं और संगीत दिया है सपन चक्रवर्ती ने।

धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान, डब्बाली हरियाणा से जेके बोकलिया, सुनीता, संजय, अनिल और मीनू बोकलिया। आइए इन सबकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म परिचय से ये गीत, आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में। शब्द रचना है गुलजार की और संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

0: छंजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ।
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला
0: ऐसे नहीं, बोलो मैं।

श्रोताओं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं मनचाहे गीत आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला पत्र जो हमारे हाथ में है वह आया है सादुल शहर से। भेजने वाले हैं ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया, अनमोल, धर्मपाल और रमेश मिगलानी। मॉडल टाउन करनाल से आप हैं सुधीर नूतन, संदीप, सुनीता जैन और सुनीता शर्मा। ये खत हमें मिला है दौलतबाग मुरादाबाद से। भेजा है जाफिर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी का। गांव नथाना पंजाब से हरछिंदर छिंदा, जसवीर जसी, गगन सोनी, जसमीन, रेखा, सीता और गीता। करुला मुरादाबाद से आप हैं अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। सुंदरखेड़ राजमाता नगर महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति, आकांक्षा, आकाश कुमार, प्रदीप और आसिफ। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और मेहराज जहां। आइए सुनते हैं कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज़ में फिल्म जुर्म से ये गीत। इंडीवर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया राजेश रोशन ने।

लेवाई से गुलाबदास मानीपुरी, दतरंगी से भागवत वर्मा, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से पत्र भेजा है गुरविंदर सिंह पांडा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांडा, गोलू काकू और जे एस रामगढ़िया ने। महादेव घाट अमलेश्वर से आप हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, रेयांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और छवेंद्र कुमार वर्मा। जतुका किशनपुर से पत्र भेजा है आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदनी नाज ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, फिल्म लाल पत्थर से किशोर कुमार की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है देव कोहली ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम मनचाहे गीत को यहीं विराम देते हैं, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार और ठीक 11:05 पर अंग्रेज़ी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश